0: गांव में रची बसी है बन के मोहब्बत का सास।
1: GAFM नेटवर्क सिंध की आवाज। तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मह

0: अभी बुधोपिया त्रपाद मटवाइन सिक्स सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते मुझो
0: आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कहीं मारू सुगर खा भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे।

सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

करे मुआदो करे बियो ईरान के तबाह करे ईरानी मईशत के बर्बाद कयो वञे। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर अमरीका ऐं इसराइल खे कंहिं बि अग्राहीअ जी सूरत में शदीद जवाबी कार्रवाई जी वार्निंग। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थियो त अमरीका जा खिते में मौजूद समूरा अॾा निशाने ते हूंदा। रिपोर्ट्स आहिनि त ईरान ख़िलाफ़ ॿीहर हमले जी तयारी थी रही आहे। अमरीका ऐं इसराइल जो खिते जे कहिड़नि मुल्कनि सां गुझो इजलास कयो वियो आहे। जेकॾहिं अमरीका ऐं खिते जे मुल्कनि का ग़लती कई त हुन जो जवाब बिना कंहिं मसरत जे ॾिनो वेंदो। केपीअ जे इलाइक़े हंगु में सिक्योरिटी फोर्सेस जो ऑपरेशन 8 दहशतगर्द मारिजी विया। फायरिंग जी ॾेवठ में 8 जवान शहीद। आईएसपीआर मौजूद भारतीय सरपरस्तीअ में कम कंदड़ 8 गर्द मारिजी अबू ऐं लेफ्टिनेंट शिराज शहादत माणे, जॾहिं त 4 जवान बि शहीद थी विया।

खे 3MPO तां हिरासत में वरितो वियो आहे। पार्टी ज़रियनि मूजिब अलीमा ख़ान खे लेटिन रोड तां हिरासत में वठी कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो आहे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गुअर चयो त अलीमा ख़ान जी गिरफ़्तारी हालतूं ख़राब करण जो पहिरियों क़दम आहे। अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करण या नज़रबंद कंहिं शिकमा खां रजिम था, अहिड़े क़दमनि खां पासो कयो वञे।

इस्लामाबाद खे सोमनाथ बणाए छॾींदासीं, अॻु में बि लाशा खणी वापसि विया हुआसीं, हाणे बि ईअं न थींदो। मुख़्तलिफ़ रस्तनि तां थींदा इस्लामाबाद पहुचंदासीं। पीटीआई केपीअ जे सदर जुनेद अकबर चयो आहे त मोटरवे ऐं खां थींदा जबलनि खां थींदा इस्लामाबाद पहुचंदासीं। ममलकती वज़ीर तलाल चौधरी चयो त पीटीआई केपीअ में दहशतगर्द नथी रोके सघे। केपीअ खे अॻु में ई सोमनाथ बणाए छॾियो अथनि। हर हंध खे सोमनाथ बणाइण हिननि जी रवायत रही आहे। हुकूमत खेबर पख़्तूनख्वा खां

पहुचाईंदो हलां त अॼु मां सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं मुख़्तलिफ़ मौज़ुनि ते गुफ़्तगू कंदासीं ऐं चूंड मुहिम जी सूंह हूंदी ऐं अॼु जी जेका अॼु जेको जेको सवाल हूंदो उहा अॼु जी गुजारत हूंदी उहा ॾिठ में हूंदी ॿिनि पावनि ते हूंदी अव्हां खे ज़रूरु नोट करींदासीं ऐं अव्हां खे इंतज़ारु थींदो ओसियड़ बि थींदो त जेका अॼु जी गुजारत आहे उहा कहिड़ी आहे। हिन काइनात में इंसान खे पैदा कंदड़ ऐं वजूद बख़्शींदड़ हिकु ख़ालिक अल्लाह आहे जेको समूरनि मुसबित क़दरनि जो सरचश्मो आहे। हीअ तख़लीक़ मादी ऐं हुन जे हरकी कानूननि जो नतीजो न आहे। हुन जे हक़ीक़ी ख़ालिक में हयाती शऊर इरादो ऐं मंज़िल मक़सूद मौजूदु आहे जंहिंजो सबूत काइनात ऐं ख़ुदि इंसान जो वजूद आहे। छाकाणि त उन्हनि क़दरनि ऐं सिफ़तनि खां बिना तख़लीक़ नामुमकिन आहे। हीअ ख़ालिक़ ज़िंदा आहे, हयो ऐं कयूम आहे, समीउ ऐं बसीर आहे, वजूद जोहर मज़हर उन मां आहे। उन जो मतिलब आहे त ख़ालिक़ जी ज़ात वाहिद आहे यानी हिकु आहे, उन खां सवाइ को बि ॿियो ख़ालिक़ न आहे। उन जी तख़लीक़ ऐं ॿियनि जे कमनि में का बि ॿी हस्ती शरीक न आहे। उन करे हो सभिनी क़ौमुनि जो आका ऐं परवरदिगार आहे। उन ई सां पाण रबुल आलमीन आहे ऐं उन हक़ीक़त जे साम्हूं आणण करे उहो हर क़िस्म जी आज़िज़ी ऐं शुक्र जी समूरनि लफ़्ज़नि ऐं जज़्बनि जो मुहवर ऐं मर्कज़ उन जी ज़ात खां सवाइ ॿियो को बि नथो थी सघे। काइनात जी हर शइ अलाह पाक जी तस्बीह करे थी, ज़िक्र करे थी मालिक हक़ीक़ सां।

जीअं सवेर प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां ताईं असां पहुचाईंदासीं अॼु जो सवाल यानी हिकड़ी गुजरात आहे ॾिठ में ऐं उहा ॾिठ वारी गुजरात ॿिनि पवनि ते आहे। चवे थी त उमिरि मुंहिंजे देश में क़ुरान न, थोरो सोचजो ऐं ॿ पवा इहा आहिनि त क़ुरान शरीफ़ में बि उहा भॼी सघे थी ऐं देश में बि भॼी सघे थी, उहे ॿ पवा आहिनि यानी गुजरात आहे त उमिरि मुंहिंजे देश में क़ुरान न। ऐं समन इहा असांजी अॼु जी पंहिंजो गुजारत आहे, असांजो अॼु जो सवाल आहे। तव्हां असांखे एस एम एस ज़रिए बि सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था, फेसबुक ज़रिए बि तव्हां असांखे सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था ऐं तव्हां असांखे लाइव कॉल ते बि सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। खणी नेण खुमार मां जान कयाऊं नाज़ नज़र, सूरज शाखूं झकियूं कोमाणो कमर, तारा कतियूं ताइब थिया देखींदे दिलबर, झकियो थियो जोहर जानिब जी जमाल सां।

0: सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: नौ रंग आर्च क्रीम हेयर कलर, हर रंग में खूबसूरती, हर अंदाज में एतमाद।
5: It's 9:45 AM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
6: Sachal ki sarmast dharti,
7: Fatih Mehran, Sindh ki ek aur pehchan.
6: GAFM 88 Network,
7: Sindh ki awaaz.

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अची कयूं ऐं प्रोग्राम रोशन सुबह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां जंहिंमें सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो मेहरापुर मटियारी सकरंड ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया मां जो मेज़बान नेमत लाइ जुड़े जो मुंहिंजे देश जवाब खे नोट कराईंदो हलां उते सेंड कंदो पंहिंजो नालो पंहिंजे सेंड कंदो 888 ते ऐं फेसबुक जी असांजी आई डी आहे जी एफ एम 88 जी आई डी आहे असांजो पेज आहे फेसबुक जो तव्हां उन जवाब मोकिले सघो था ऐं तव्हां असांजे कॉल ज़रिए बि पंहिंजा नाला नोट कराए सघो था सवाल जो सही जवाब ॾेई सघो था 0333221322888 छो त जंहिं बि दोस्त खे जेका बि सहूलियत हूंदी आहे तव्हां उन ते पंहिंजो सवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था ऐं सवाल तमामु आसान आहे थोरो गौर कयो पंहिंजे वॾड़नि सां सलाह मशवरो ज़रूर कयो छो त उमिरि जा जेके वॾड़ा हूंदा आहिनि उन इन्हनि गुजरातनि खे ॼाणींदा आहिनि त गुजरात माना गुज लिक त उन जो मक़सदु छा आहे उन जी माना छा आहे ऐं उन गुजरात में कहिड़ा लफ़्ज़ आयल आहिनि ऐं उनखे असां कीअं ॻोल्हियूं त उहे मिली पवंदा आहिनि ऐं मां तव्हांखे आसान करे ॾिनी आहे गुजरात त ॿिन पवन ते मुश्तमिल आहे त उमिरि मुंहिंजे देश में क़ुरान न इहा असांजी गुजरात आहे असांजो सवाल आहे साईं मुंहिंजा सीने में दिल में दर्द दर्द में तशंगी तशंग में आरज़ू आरज़ू में हसरत हसरत में हिजाब हिजाब में उमीद उमीद में ख़्याल ख़्याल में तसवर तसवर में तस्वीर तस्वीर में तूं तो में अदा अदा में हया हया में निज़ाकत निज़ाकत में शरारत शरारत में गुस्सो गुस्से में बनावट बनावट में मोहबत मोहबत फिदा जी हसीन तख़लीक़ आहे।

जी समझ आ प्रोग्राम रोशन सुबह में असावां के गुजारत नोट कराई आ गुजारत जका बिन पवन ते मुश्तमिल आहे ऐं गुजारत खे बुधण सां थोरो सोच ऐं समझण जी ज़रूरत आहे ऐं जेकॾहिं अव्हां खे का ॻाल्हि समुझ में नथी अचे त पंहिंजे झूनड़नि खां पंहिंजे वॾनि बुज़ुर्गनि खां अव्हां अहिड़ी मालूमात गुजरात वारी वठी सघो था। इन में को ऐब कोन्हे, चवंदा आहिनि त पुछणा न मुंझणा, तव्हां मालूमात वठी सघो था। असांजी अॼु जे प्रोग्राम जी गुजरात आहे त उमिरि मुंहिंजे देश में क़ुरान न मुंहिंजे दीवान न। समय जिते पदमणियूं प्यार जे पटनि ते प्रीत सां बेलड़ा खणी कुंजनि जे कतारनि जीअं घूर मोटन थियूं, जिते मासूम ॿारड़ा माउ खां लिकी वसकारे जे थधे नवान में ऐं टोभनि ऐं तराइनि में वेझण लाइ भॼी निकरनि, जिते किरड़ कांडेरा ऐं रोहिड़ा वसकारे जो साओ लिबास पहिरण खां पोइ फिरदोस जो ॾेख था ॾियनि, जिते हिक पासे हमरचे जा मधुर संगीत सुरनि सां भिटूं

पड़ाडो थियूं कनि ऐं उते पखियुनि जूं मिठियूं लातियूं ॿुधण में थियूं अचनि, जिते दुलावर ईअं महसूस थींदो आहे ॼण ज़िंदगी जे राहनि ते दर्द ऐं पीड़ान जा पोखियल थूहर पहाड़ पहाड़ खां पटे कंहिं उछलाए छॾिया हुजनि। तॾहिं चवंदा आहिनि त जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंदियूं मेहराण जूं।

0: जी आसमिन प्रोग्राम रोशनी सारी है तवाजो असा जे वगी ती सुबह जा हन वक्त वक्त है खबरन जो है खबरन का बाद में न्यू कमर्स उन का बाद में वापस इंदासी कने में वंजो
1: जलवा तपस्यन जु बजू सुरहाणी
2: और गोरी रंग अर्जुन।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Hardiya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो माँ
7: इजलास कयो या भी खबर आहे जेकर अमेरिका खे ते मुल्कन का गलती कई त उन में जो जवाब बिना कें मुसलत जे दिनो विंदो
8: इस्लामाबाद मार्च हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हुकूमत ने यह तय किया हुआ है कि हम अपनी नाअहली अपनी करप्शन अपनी लूटमार अपनी बैड गवर्नेंस का बदला आवाम से लेंगे हत्या टैक्स गुंडा टैक्स जद्दा टैक्स जो रेवी की सूरत में है यह पेट्रोल की हर लीटर पर वसूल किया जा रहा है
7: पेट्रोलियम लेवी खिलाफ जमायत इस्लामी जो मार्च इस्लामाबाद तरफ रवा दवा हाफिज नईमुल रहमान की अगवाणी में कराची मां निकतल ट्रेन मार्च जो नवाब शाह बिरयार रोड रोड़ी ए बेन शहर में पहुंचने ते शानदार इस्तकबाल हाफिज नईमुल रहमान जो ट्रेन मार्च के खिताब कंदे चवण हो इस्लामाबाद में अवामी समुंड उथलो वफाकी लेवी ए टैक्स के नाले से भत्तो वी रही है पेट्रोलियम लेवी हुकूमत के वापस वी पवंदी असांजी जिम्मेवारी आए त पुरतशद्दुद जत्थो इस्लामाबाद अचण न ॾियूं जमायत इस्लामी वारा पुरमन आहिनि सुध समा वारे वफ़ाकी वज़ीर अता तारण चयो आहे त पीटीआई वारनि खे इस्लामाबाद में किथे बि रस्ता बंदि करण न ॾींदासीं जमायत इस्लामी वारनि सां राब्ते में आहियूं हू पुरमन ऐं समझ वारा आहिनि कानून सभिनी लाइ बराबरि आहे नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब चयो त वॾनि ॾुखाइनि सां मुआशी इस्तक़ाम हासिल कयो आहे हाणे तरक़ी तरफ़ वधणो आहे पर धरणा तरक़ी जे सफ़र में रुकावट बणजंदा अहिड़ियुनि हालतुनि में धरणा हुअण समझ खां ॿाहिरि आहे मुआशी तरक़ी सभिनी जी गॾियल ज़िमेवारी आहे ऐं पीटीआई बानी जी भेण लाहौर मां गिरफ़्तार डीसी लाहौर जो चवण आहे त अलीमा ख़ान खे 3MPO तहत हिरासत में वरितो वियो आहे पार्टी ज़रियनि मूजिबि अलीमा ख़ान खे रोड तां हिरासत में वठी कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो त अलीमा ख़ान जी गिरफ़्तारी हालतूं ख़राब करण जो पहिरियों कदम आहे अलीमा ख़ान खे गिरफ़्तार करण या नज़रबंद करण तशद्दुद ऐं छिक जे बराबरि आहे अलीमा ख़ान जी गिरफ़्तार जी मज़म्मत कयूं था अहिड़े कदमनि खां पासो कयो वञे अलामा राजा नासिर अब्बास चयो त अलीमा ख़ान खे हिरासत में वठी चयो वियो त अमुन खे ख़तरो आहे असां लाइ सभु रस्ता बंदि कया विया आहिनि
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
0: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है सुनते रहो GAFM 91.6
9: हर बार जा नंदड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाओ जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था पोलियो मतिलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी
10: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज ॿुधंदा रहो

जी सिंह जा प्रोग्राम रोशन सुबह में वापस अची चुका आहियूं ऐं असांजो अॼु जो सवाल आहे उमिरि मुंहिंजे देश में क़ुरान थोरे सोचण ऐं समझण जी ॻाल्हि आहे ऐं ज़रूर कंहिं पहिरीं प्यारे दोस्त सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे ऐं मुंहिंजे ख़्याल में उहो पहिरें नंबर ते आहे ऐं सिंह जा प्यार जो अनमोल तोहफ़ो खणी असां जेको आहे सो नफ़रतनि जो बिज ख़तमु करियूं चओ तरफ़ प्यार जा बूटा पोखियूं इहे सभु ज़ाहिर रस्मूं रीतूं बि ख़तमु कयूं सम्झा उहे प्यार जा जेके पेचर आहिनि उहे तमामु बहितर आहिनि ग़लति ॻाल्हियुनि खां ग़लति कमनि खां कंहिंजी दिलि आज़ारी करण खां बहितर आहे त असां जेको प्यार जो जिते कुर्ब मिले असां उते पहुचूं पंहिंजा पखड़ा उते ॾियूं ऐं असां पंहिंजो जेको आहे सो दिलि उते ठारियूं जिते प्यारु मिले।

साईं मुंहिंजा ख़्वाब जेसीं ताबीरनि जे पोपटनि खे पकड़ियुनि तेसीं कंहिं आराम बाबति सोचण जिदोजहद कंदड़ लाइ मायूसी फैलाए थी। अणथक ऐं बिना कंहिं वक़फ़े वारी जिदोजहद ई मंज़िलनि जो मुंहुं ॾेखारे थी। वक़्त जूं वीरूं किथे बि आणे बीहारे सघनि थियूं। कंहिं ॾाहे जो चवणु आहे त नंढा माण्हू माण्हुनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि, वॾा माण्हू ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि, ऐं अज़ीम माण्हू नवनि नवनि ख़्यालनि सोचुनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि। ईअं ई नंढा माण्हू वक़्त खां थोरो पोइ ते ऐं वॾा माण्हू वक़्त खां सां गॾो गॾु हलंदा आहिनि। जेकॾहिं वक़्त जूं वाघूं ओॾां उन्हनि जूं वाघूं, पर अज़ीम माण्हू पाण खे कॾहिं बि वक़्त जे वाघुनि हवाले न आहिनि कंदा, ऐं हू वक़्त जे जूं वाघूं मोड़ण बाबति सोचींदा आहिनि, ऐं वक़्त खे हिकु नओं रूप ऐं हिकु नओं दगो ॾियण जी कोशिश कंदा आहिनि, ऐं हू वक़्त जे वाघुनि खे मज़बूती सां झले मुस्तक़बिल ॾांहुं सफ़र शुरू कंदा आहिनि।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्च अपनाएं. आर्च ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट्स, एक्नी एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट, स्पार्कलिंग और दे शानदार मिरेकल ग्लो. आर्च ब्यूटी क्रीम.
2: सचल की सरमस्त धरती,
3: फातिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान.
2: GAFM 88 नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज.
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो. छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
5: लाड़काने वासन लाए खुशखबरी, डॉक्टर अजीत कुमार MBBS FCPS डर्माटोलॉजी चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर हिते मोहिड़ा डडर मल्लो पुरानी खारश वारा चरो पुरानो फट चिटरी लैशमिनियासिस चेहरे जा दाग बग नहन जो खराब थियण वारन जा मसइला एलर्जी औरतन जे चेहरे ते गैर जरूरी वारन जो इलाज बेहतरीन नमूने कयो वञे थो. याद रखंदा हर जुमे ते चमड़ी जे मरीजन जी मुफ्त चकास कई वेंदी. डॉक्टर अजीत कुमार चमड़ी जे बीमारियों जो माहिर. एड्रेस अली हॉस्पिटल बगल रोड लाड़काणो. टाइम रोजानो शाम जो 4 बजे का रात जो 8 बजे तई आचर दे क्लिनिक बंद रहंदी. वधिक मालूमात लाए मोबाइल नंबर 03124344689.
6: डॉक्टर नूर हुसैन पुसियो MBBS FCPS तजुर्बेकार माहिर जनरल फिजिशियन इते मेडिसिन सा लागा पेल सबनी बीमारियों जो इलाज कयो वञे थो जैमें मलेरिया जो बुखार टाइफाइड खंग नज़लो जुकाम छाती जा इन्फेक्शन शुगर ब्लड प्रेशर गैस अल्सर कब्ज मैदे हाजमे जा मसला थायराइड जा मसला मोटापे जो इलाज वाइटमिन्स की कमी थकावट कमजोरी जिगर पेट जो बीमारियों जोड़न जो सूर दिल के शुरुआती बीमारियों जो बेहतरीन इलाज कयो वञे थो. डॉक्टर नूर हुसैन पुसियो माहिर जनरल फिजिशियन. एड्रेस तैमूर हेल्थ कॉम्प्लेक्स सामू आर्ट्स काउंसिल सचल कॉलोनी लाड़काणो. टाइम रोजाना शाम जो 4 वगे का रात जो 9 वगे ताई आचर ते मंझन जो 2 बजे का रात जो 9 बजे ताई. याद रखंदा जुमे जे दिन मुफ्त चकास कई वेंदी आहे. राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 03051231559.
3: जो नजर आए जैसे इन फूलों की बागात में कुदरत के हसीन नजारों में और चेहरे की खूबसूरती नजर आती है. एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम एडलवाइस एक्सट्रैक्ट क्रिस्टल वाइट एक्टिव कंबाइन व्हाइटनिंग फार्मूला डे एंड नाइट ब्यूटी क्रीम जो स्किन के अंदर लहर तक जाकर असर दिखाए जेल से डार्क स्पॉट्स रिंकल्स और दाग धब्बों को मिटाकर स्किन को क्लियर करे दिन बदन जेल को ब्राइट करे 3 दिनों में चेहरे को गोरा और खूबसूरत बनाए और चेहरे को दे फूलों जैसी ताजगी हर रोज. एक्सपोर्ट ब्यूटी क्रीम अ प्रोडक्ट ऑफ 5-स्टार कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल. हेल्पलाइन नंबर 03073468474.
7: अदी छा गाला एडो खुश पई नजर अची.
8: हाँ भेण बस खबर ही कुछ एड़िया हाने सा और तू भी पंजी तकलीफ़ आसानी सा बुधाए सगू थ्यू.
9: जी हाँ सिंधु जी पहरी फीमेल यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी जै पंजी FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री मा लखे रुपया कमाण बदरा लाड़काने में औरतुन लाए फ्री अस्पताल शुरू कई आहे जिते बुकिंग जी बीमारिन मसला पेशाब में रुकावट जलन साड़ो जख्म बेओलादी बुक्की मसाने जी नाली में पथरी जो ऑपरेशन जदीद लेजर चीरे वसीले करे थी. याद रखना डॉक्टर साहिबा चकास बुकिन जो अल्ट्रासाउंड ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त कंदियू आहिन. बस कमरे दवा जो थोरो खर्च मरीज पाण भरींदा. हाँ एक्सरे IVP CT स्कैन पिण अध पैसन में कराए डे थी. पेशा वराना डॉक्टर डा मरीज खणी वेंदड़न जे भुलाइण ते तवजो न डियो. एड्रेस अल निसा मेडिकल सेंटर नद सिटी चौक सचल मेडिकल कॉलोनी लाड़काणो। टाइम रोजाना शाम जो 4 बजे खां रात जो 9 बजे ताईं ऐं आचर ते मंझंदि जो 12 बजे खां शाम जो 5 बजे ताईं। राब्ते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी मोबाइल नंबर 0334224189।
10: अनीसा ख़ैर त आहे? मंडकाए थो घुमे, धक लॻो अथई छा?
11: हाओ यार अब्दुल्ला, एक्सीडेंट में जंघ जो हॾो भॼी पियो आहे। तोखे त ख़बर आहे ग़रीबी हाल आहे, पैसा बि कोन्हनि के। सोचियां थो ऑपरेशन किथां करायां।
9: भाऊ परेशान न थी, लाड़काणे में डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी सूफी सतारी वेलफेयर ट्रस्ट तरफां ऑपरेशन मुफ़्त करे थो ऐं इलाज बि अहिड़ो सुठो थो करे जो ठीक बि जल्दी थी वेंदे। ग़रीब तोड़े अमीर लाइ ख़ुशख़बरी, डॉक्टर प्रदीप कुमार लालवाणी MBBS FCPS आर्थो, हॾनि ऐं जोड़नि जो माहिर सर्जन, कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन, सिविल हॉस्पिटल लाड़काणो। हिते रोज़ानो हॾनि ऐं जोड़नि जे मरीजनि जो फी सबील लाह इलाज कयो वञे थो, जंहिं में रोज़ानो चकास मुफ़्त, रिपोर्टूं 40% फ्री, एक्सरे 40% फ्री ऐं ऑपरेशन में डॉक्टर जी का बि फी न आहे। असां वटि हॾनि ऐं जोड़नि जो सूर, संदनि जो सूर, कुन रग जो सूर, यूरिक एसिड, चेल जो सूर, शुगर जा फट, हथनि पेरनि जो सुन थियण, पैदाइशी टिड़ियल फिरियल पेरनि जो इलाज ऐं भगल हॾनि जो ऑपरेशन बहितरीन नमूने कयो वेंदो आहे। एड्रेस: कराची मेडिकल सेंटर, लग घिंटी फाटक, लाड़काणो। टाइम रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं, आचर ते सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 3 बजे ताईं ऐं छंछर ते क्लिनिक बंद रहंदी। डॉक्टर साहब हर अंगारे ते शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं शान मेडिकल सेंटर वकील कॉलोनी लाड़काणे में मरीजनि जो मुफ़्त मुआइनो कंदा। राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 03158799

0: तव्हां जा ॿार रहनि स्कूल जे लाइ हमेशा तयार ऐं मुतमिन। एड्रेस: ए टू ज़ेड यूनिफॉर्म, जीपीओ रोड, लाड़काणो। राब्ते जे लाइ मैनेजर वकार अली। मोबाइल नंबर 03131157672।
1: खु़शख़बरी, लाड़काणे शहर जो मशहूर ऐं मेडिकल जे दुनिया जो वॾो नालो डॉक्टर असदुल्ला महर, MBBS, FCPS, गोल्ड मेडलिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट आर्थोपेडिक सर्जन। हिते हॾनि ऐं जोड़नि जो सूर, कुन रग जो सूर, वाई ऐं चेल जो सूर, वॾी उमिरि जे माण्हुनि ऐं नंढनि ॿारनि में हॾनि ऐं जोड़नि जा मसइला, फ्रेक्चर, फिरियल पेरनि ऐं जंगुनि खे ठीक करणु, हॾनि ऐं जोड़नि जे हर क़िस्म जो ऑपरेशन जदीद मशीनुनि ज़रिए कयो वेंदो आहे। डॉक्टर असदुल्ला महर, हॾनि ऐं जोड़नि जो माहिर सर्जन। टाइम: आचर खां जुमो, रोजानो सुबुह जो 11 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं। एड्रेस: बैतुल शिफ़ा बोन ट्रामा क्लिनिक, लगनऊ देरो चौक, लाड़काणो। यादि रखंदा, डॉक्टर साहब हर छंछर ते सखर शहर में मरीजनि जो मुआइनो कंदा आहिनि। एड्रेस: सखर टाउनशिप, आरिफ बिल्डर्स, बंगलो नंबर 20, सेक्टर नंबर 3, घोड़ा गेट, सखर। टाइम: मंझंदि जो 2 बजे खां शाम जो 6 बजे ताईं। वधीक राब्ते जे लाइ मोबाइल नंबर 03-66-86-4025 ऐं फोन नंबर 07-44-57-199।
2: अदी, ॾिसु त ॾे, मुंहिंजी नुंहुं खे औलादी कोन थी थिए।
3: भेण, डॉक्टर सुमेरा बिरोही खां पंहिंजी नियाणी जो इलाज करायोसीं। हाणे मुंहिंजी नियाणी औलाद वारी आहे।
1: तुंहिंजे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर।

जी हा समय प्रोग्राम रोशन सुबह में अवां के इंतजार पंहिंजे सवाल जे पंहिंजे गुजारत जे सही जवाब ॿुधण जो अवां खे इंतज़ार ज़रूर आहे ऐं अवां खे इंतज़ार ज़रूर हूंदो त अवां जा नाला बि प्रोग्राम में शामिल थियनि। पर असां असांजे प्रोग्राम में सभिनी दोस्तनि कोशिश कई आहे ऐं प्रोग्राम में वक़्तु ॾिनो आहे, टाइम ॾिनो आहे ऐं काफ़ी दोस्तनि जेको आहे उको धोको तक़रीबन तमामु दोस्तनि उको धोको हयो आहे ऐं कंहिंखां न पुछियो आहे न कंहिंखां मालूमात वरिती आहे। असांजी जेका अॼु जी त उमिरि मुंहिंजे देश में क़ुरान क़ुरान शरीफ़ जा काफ़ी नाला आहिनि, उन्हनि मां उहा गुजरत भॼे थी ऐं उमिरि मुंहिंजे देश में जेको हुन जो देश आहे उमिरि मारवीअ जो जेको देश हुयो उहो थर जो इलाइक़ो हुयो। असांजा काफ़ी दोस्त उन इलाइक़े में ई वेठा आहिनि ऐं इन गुजरात मां ज़ाहिरु थिए पियो त उमिरि मुंहिंजे देश में त उमिरि मारवीअ जो जेको देश हुयो उहो थर जो इलाइक़ो हो, मीरपुर ख़ासि जो इलाइक़ो हो।

मिठी जो इलाइक़ो हो, उमरकोट हुयो ऐं इलाइक़ो इहो ई आहे। त जेको ॿियो पाओ हो देस वारो, उहो थर जो इलाइक़ो मार उमर जा नीम

अमीर मीराणी साईं तारक मीराणी नवंदरो चौक लाड़काणे खां डॉक्टर शहजाद अज़ीज सुमरो ऐं वासिफ़ अली बुगटी लाड़काणे खां दिलीप कुमार मेंगवाड़ पाबोवेरो खां सोरा मंगरियो ॻोठ सजड़ो मंगरियो बकापुर खां महबूब अली शर ठरी मीरवा खां नूर हुसैन तुनियो बदीन खां नज़ीर सोबतपुर बलोचिस्तान खां मोहम्मद पन्ना कश्मोर खां मोहम्मद खान कुंभार हालेपुटा स्टाप खां तालिब हुसैन मरी ॻोठ लाल मोहम्मद मरी खां इक़बाल लाशारी खालिक लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां बरकत जमाली जाफ़राबाद बलोचिस्तान खां ऐं सैद ताहिर हुसैन शाह सी टी डी लाड़काणे खां क़ुर्बान अली ख़ासखेली झंडे मरी खां हाफिज़ रियाज़ कलोड़ो ॻोठ फाज़िल कलोड़े खां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। असां आहे ख़ुशनसीब आहे नज़ीर हुसैन मंगरियो रोहिड़ी सखर खां दोस्त जे पसंदि जो कलाम आहे उहो अव्हांखे ॿुधाईंदासीं। उमिरि देस पंहिंजो विसारणु ॾुखियो आहे। आबदा परवीन जो आवाज़ आहे गॾिजी ॿुधूं।

जी हाँ समिन प्रोग्राम रोशन सुबह में असांजो अॼु जो विनर अॼु जो खुश नसीब नज़ीर मंगरियो रोहिड़ी सखर खां हुयो जंहिंजे पसंद जे असां कलाम बि हलायोसीं त इन आपदा परवीन जे ख़ूबसूरत नगमे ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे पियो पंहिंजे पुॼाणी ते हयाती बख़ैर इनशाला अवां सां मुलाक़ात ज़रूर थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जूणे जो ॾींदा इजाज़त अलाह निकाह।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 11 AM. This time check is brought to you by
3: White-ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो माँ
7: हम अपनी जात के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं। हुकूमत ने यह तय किया हुआ है कि हम अपनी नाअहली, अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपनी बैड गवर्नेंस का बदला आवाम से लेंगे। भ्रष्टा टैक्स, गुंडा टैक्स, जग्गा टैक्स जो लेवी की सूरत में है, ये पेट्रोल की हर लीटर पर वसूल किया जा रहा है। लेवी का भत्ता अगर रहेगा तो फिर एहतजाज भी बढ़ेगा और इतना बढ़ जाएगा कि फिर ऐसा ना हो कि ये हुकूमत गिराव तहरीक में तब्दील हो जाए।
8: पेट्रोलियम लेवी खिलाफ जमात इस्लामी जो ट्रेन मार्च इस्लामाबाद तरफ रवान दवा। हाफिजुल नईम रहमान की अगवाणी में कराची मां निकतल ट्रेन मार्च जो नवाबशाह बिरया रोड रोड़ी ए बेन शहरनि में इस्तक़बाल। हाफिज नईम रहमान चयो आहे त लेवी जे नाले ते भतो वरितो पियो वञे, पेट्रोलियम लेवी हुकूमत खे वापसि वठणी पवंदी।

पीके जे शहर शहीद थियल पाक फौज जे बिन ऑफिसरन समेत छह जवानन जे जनाज़े नमाज पिशावर में अदा। जनाज़े नमाज में घरू वजीर मोहसिन नकवी, गवर्नर के पी के फैसल करीम, कोर कमांडर पिशावर ए बेन की शिरकत, शहीद कैप्टन अबूजर फारूक, शहीद लेफ्टिनेंट शेराज नजीर ए बेन की जनाज़े नमाज अदा कई वही। आई एस पी आर मौजूब शहीद ऑफिसरन ए जवानन जे मरण की तदफीन अबाड़न इलाकन में फौजी एजाज सां कई वेंदी। गुजरियल ॾींहुं दहशतगर्दनि सां मुकाबले दौरान पाक फौज जा ॿ ऑफिसर ए जवान शहीद थिया हुआ।

0: हेल्प करते हैं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहा ये वायरस अभी तक बच्चों मुस्तकबिल स्मृति से मुल्क भी मिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो
4: दिस प्रोग्राम बैंक इस्लाम नहीं लाया, पाकिस्तान का पहला
5: हाथ बदल रहा हूँ।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ मेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: FM 91.5

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 11:45 AM. This time check is brought to you by
3: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
4: Har baar ja nandra kadam ik nayi duniya da vadhan ta, par polio inan kadman ke roke bhi sage to. Inhiye kare jadhe bhi polio muhim dauran polio workeran di dastak the ta dar kholyo ae penje baran ke polio khan bachao ja ba katra zarur pyaryo chho ta ye katra बारन में मुदाफ्ती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
6: This program is brought to you by
3: Bank Islamini Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
7: Abhi budhopya GA Hyderabad Matyari FM 91.6 Sindh jo awaaz.
8: O pita ja pitai pita te vasai noor mujho to
7: Sindh jo awaaz budhanda raho.

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: Express PM. This time check.

0: is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho, a product by International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
3: ब्रॉट टू यू बाय
4: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो
5: सब सहूलतूं मिली रहियूं आहिनि पीटीआई जी अक्सरियत खे ख़बर न आहे त लॉन्ग मार्च छो थी रहियो आहे सूबनि वारो मामिलो बि तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे नवां सूबा ज़रूर ठहंदा ईराणो आहे मैशियत सख़्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं पहुचणो आहे मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया अमेरिकी टीवीअ खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाती मरहले ते पहुची वियो आहियां ईंदड़ ॾींहं में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण लाइ मिली सघनि थियूं गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी ईरान जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थिया मौजूदु समूरा अॾा निशाने ते हूंदा अमेरिका सां हमलनि में सहकारी मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought
2: to you by the National Park.
3: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है. सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस चूंका महफूहिम

0: जड़े भी पूछाओ बोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: It's 12:45 PM. This time check is brought to you by
2: Bank Islam ne laya Pakistan ka pehla Sharia compliant gold based financing.
3: Duniya ke zyadatar mumalik se polio ka khatma ho chuka hai. Sirf do mulk rehte hain jahan ye virus abhi tak bachchon ka mehfooz mustaqbil aur badkismati se hamara mulk bhi in do mumalik mein shamil hai. Ab zimmedari hum sab ki hai. हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: बैंक इस्लाम ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
5: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंधु जो आवाज।
6: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे
5: सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: दिल गुलाम किए बादशाह
1: जाने दिल जाने अत जाने दिल जाने अत जाने कि दर्द पिछाड़ यार।

0: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।
2: It's 1 PM. This time check is brought to you by
3: White Ash Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan.
4: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
5: Brought to you by
6: Sona Urea Granular. मिट्टी जो मान वधाए।
4: आप सुन रहे थे। अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News.
7: अगर वो लॉन्ग मार्च के लिए आते हैं तो जिस तरह पिछली दफा बात हुई थी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे इस दफा हम कमी छोड़ेंगे या कोई लूप होल है जो छोड़ेंगे, उनकी लीडरशिप में मेजोरिटी लोग जो हैं वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनोन अमल हुकूमत कराएगी। उसके अलावा हुकूमत का अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। मैं एक चीज कहूंगा, खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकलें और आप जिस अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें।
8: वंस फॉर ऑल कोई ना कोई चीज करेंगे, ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
9: इस्लामाबाद ते कहीं भी चढ़ाई करण न लींदासीं। हिन भेरे विनसाफ़ार हाल थींदो के पी जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे, बंद घिटी तरफ़ न वञे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो। लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त लॉन्ग मार्च थियो त हाईकोर्ट जे फ़ैसिले ते रू मूजिब अमल कयो वेंदो। हिन भेरे ईअं न थींदो त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे। हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो अफ़ग़ानिस्तान सां। लागापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे। हालतूं बरक़रार रहियूं त हज़ारे रुपया पेट्रोल महांगो न मिलंदो।
10: अल्ला ताला नए सुबह वाला मामला जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं।
11: The finest details are often the ones
10: कर रहे हैं। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अल्लाह ताला ने चाह तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे। और इस बात में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
9: घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी नवनि सूबनि वारी होड ते क़ाइम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त नवनि सूबनि वारो मामिलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे। अलाह चाहियो ऐं आवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूर ठहंदा। सूबनि वारो मामिलो थधे या गरम खां घणो अॻिते आहे। ईरान खे तबाह करणो आहे, मैशियत सख़्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआदे ताईं पहुचणो आहे, मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया। अमेरिकी टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाइती मरहले ते पहुची वियो आहियां। ईंदड़ ॾींहं में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण वटां मिली सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरान उज़्बेकिस्तान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी। ईरानी फ़ौज जो कंहिं बि हमले जी सूरत में भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान। ख़ातमुल नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थियो त अमेरिका जा ख़िते में मौजूद समूरा अॾा निशाने ते हूंदा। अमेरिका सां हमलनि में सहकारी मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो। बलूचिस्तान जे पंजकोर वारे इलाइक़े में फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा 4 दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियन मौजूद पंजकोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जे 4 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो, हथियार हथ कया विया।

0: शहीद थियल पाक फौज बिन ऑफिसरन समेत छह जवानों की जनाजे नमाज पिशावर में अदा कई वही। जनाजे नमाज में घरू वजीर मोहसिन नकवी, गवर्नर KPK फैसल करीम, कोर कमांडर पिशावर ए बेन की शिरकत, शहीद कैप्टन अब्दुल फारूक, शहीद लेफ्टिनेंट सिराज नजीर ए बेन की जनाजे नमाज अदा कई वही। ISPR मौजूद शहीद ऑफिसरन जवानों के माड़न की तदफीन बारह इलाकन में फौजी एजाज से कई वी। गुजरियल ढीह दहशतगर्दन से मुकाबले दौरान पाक फौज ब ऑफिसर ए जवान शहीद किया हुआ। वरे वजीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ्तिताह करे छो। अज का शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सितंबर तक जारी रही। 25 लाख का वधिक बारन के पोलियो का बचाव वारा फुड़ा पियारा वेंदा। इफ्तिताही तकरीब के खिताब कंदे वरे वजीर सैयद मुराद अली शाह चयो आए तो समूरी दुनिया जिया पाकिस्तान में भी पोलियो खत्म कयो वेंदो। पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़ खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वेंदी। आलम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाए किरदार अदा कर।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाने अवा के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जे करे तवा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
4: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ऐं पंहिंजे बारनि खे पोलियो खां बचाव जा ब कतरा ज़रूर पियारियो, छो त ये कतरा बारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।

0: अपॉइंटमेंट आई वधिक मालूमात लाए ही अरी राप्तो करियो 03-26-22-00-440
1: मोरो नौशहरो मीरपुर खास
2: लाड़काना
1: सक्खर
2: गूंज रही है हर जगह पर
1: सिंध की आवाज
2: जीए FM 88 नेटवर्क।

चांद लगाने का काम करने वाले हैं। तो अगर आप भी खूबसूरत बनना चाहते हैं, खूबसूरती की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए खूबसूरत रहना चाहते हैं, तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में किस तरह से जो है वो जान ला देगा, किस तरह से आपकी खूबसूरती में इजाफा लाएगा और किस तरह से आपकी खूबसूरती को जो है ना वो हमेशा के लिए लॉक भी कर देगा, इस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में बहुत ज्यादा वाली ऐसी बातें आप लोगों को मालूम पड़ेंगी जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके होते हैं कि भाई हमें क्या चीज ट्राई करनी चाहिए, क्या चीज अवॉइड करनी चाहिए, कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए बेहतर साबित होंगे और कौन सी चीजें हमारी स्किन के लिए सही साबित हो सकती हैं। ये तमाम चीजें अगर आपको कोई और नहीं बताता तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे और बताएंगे भी ऐसे कि आप समझ जाएं कि भैया आपकी स्किन के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी चीजें आपने अपनी स्किन के लिए जरूरी जरूरी करनी होती है। ओके जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाते तमाम तो लोगों को वेलकम इन खुशामदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी, आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स को, इजंट इट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा के साथ मौजूद है जनाब, इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल बनाएंगे और खूबसूरती की जरा बातें बताएंगे कि भाई किस तरह से आप खूबसूरत रह सकते हैं और किस तरह से खूबसूरती को हमेशा के लिए अपने पास भी रख सकते हैं। और चाहे आप मर्द हैं साथ ही चाहे आप खवातीन हैं तो परेशान क्यों होते हैं भाई जान, हर तरह से आप लोगों की खूबसूरती का ख्याल रखा गया और हर तरह से आपकी जो है ना स्किन को प्रोटेक्ट किया गया है, हर तरह से आपको प्यारा प्यारा खूबसूरत बनाने के चक्कर में है ना। तो आप लोग अगर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो क्या तरीकेकार होने वाले वो सब कुछ बताएंगे। और अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो फिर आपने हाल चाल बताते जाएंगे। सो डियर लिसनर, अंत की हालत है कैसे ही आपकी हालत है, उम्मीद उन शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सबकुल मूड के साथ सबकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली है। आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे पूरे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे हमारे पास मौजूद होने वाले और इन 2 घंटों में हम आप लोगों के साथ इन्नी शाली बातें करने वाले। तो इन्नी शाली बातों के लिए जरा रेडी शेडी हो जाइए, हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जाइए। और बहुत से लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारे इंतजार कर रहे थे, ऐसे बहुत सारी अंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सभी अपने काम भी कीजिए, हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सुधर आली बोस आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम किया जाएगा जी आज एक बहुत प्यारे से कलाम के साथ। तो बहुत प्यारे से कलाम जो कि हमारे प्रोग्राम के स्टार्टिंग में होने वाला है जी प्ले, और कलाम सुनते ही कलाम के जैसे ही उस पार आप लोगों से मुलाकात होगी तो आपको बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है और क्या कुछ है जो आज के प्रोग्राम में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो आपका हमारा साथ पूरे पूरे 3 बजे तक का सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: जी आप सुन रहे हैं वाई टेशन डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मौजूद है जनाब, जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाले हैं। अगर आप इस्तेमाल करने वाले हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप लोगों को ये लग रहा है कि हम कहाँ से जाकर परचेज कर सकते हैं, हमारे एरिया में तो मिलते ही नहीं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का यूज करेंगे तो आप लोग जरा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर चले जाइए, वहाँ से आपको आराम से डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। चलिए, अगर नहीं भी मिल रहे हैं तो उसका हल भी आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे और कहां से जाकर आप जो है ना परचेज कर सकते हो, किस तरह से आप अवेलेबल भी करा सकते हैं। बिल्कुल जी, सब बातें की जाएंगी, लेकिन साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को ये बताया जाए कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक यानी कि सवाल क्या होने वाला है। तो आज के प्रोग्राम के अगर सवाल की बात की जाए तो आज मेरा आप लोगों से सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है कि आप सारे लोग मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ जी, आज आप मुझे ये बताएंगे कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। बिल्कुल जी, आपने सही सुना। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, और नहीं भी पता है तब भी बनते जाइए, क्यों कोई मसला नहीं। आपको टॉपिक का जवाब आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, लेकिन ये बात है कि भाई तो कई मान लिया करें, टॉपिक को जरूर से फॉलो कर लिया करें। अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम लेना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 888-1। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM88.8 हमारा पेज है जनाब, आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है। वहाँ पर आइए, आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। बिल्कुल जी, तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप ही हमारे साथ मौजूद है, आप ही हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। बिल्कुल जनाब, मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं कि वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है। हाँ, ऐसा भी कह सकते हैं कि मर्द को भी खूबसूरत बना देगा वो डर है ना, तो औरत हो या मर्द दोनों ही खूबसूरत हो जाएंगे। आप मुझे बताइए जल्दी से। और इसी के साथ साथ अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले हैं और जनाब डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराने वाले हैं, तो आपने क्या करना है, आपने जल्दी से नंबर्स को जरा नोट कर लेना है, जो नंबर में अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ, नंबर को जल्दी से जो है ना नोट कर लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बस अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाएं और आपके हाँ डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश मिलना चाहिए। तो जल्दी जल्दी से डायल कीजिए 0332738439। बोली 3384 योर नंबर आहे 03125025907। बुरी 312-50-2570 ही नंबर आहिनि जेके डायल करे तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। भले तव्हां दुनिया जे कहिड़े बि कोने में मौजूद आहियो, किथां बि तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो था, हर जॻह ते तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे अवेलेबल कराए सघो था। बस इन नंबर ते तव्हां राबितो कयो, उन्हनि खे ॿुधायो त बाबा फलाणी जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिलेव ऐं असां इस्तेमाल करणु चाहियूं था, बराए महिरबानी असांजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए वञो, त हू अवेलेबल कराए छॾींदा। छो त वैसे बि तव्हांखे ख़बर आहे त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे न, ही बाबा पोतल प्रोडक्ट आहे, पोतल सां मुराद इहा त ही सिर्फ़ न सिर्फ़ तव्हांखे पूरे पाकिस्तान में मिलंदो, बाक़ी ॿाहिरि जे मुल्कनि में बि तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली सघे थी, छो त ही हिकु इंटरनेशनल प्रोडक्ट आहे ऐं तव्हांजे लाइ इस्तेमाल करण जा खोर सारा हिन जे लाइ वजूहात मौजूदु आहे, त तव्हां छो इस्तेमाल कंदा, छो त बाबा अहिड़ो प्रोडक्ट हाणे मार्केट में अची वियो आहे, तव्हांजे लाइ बि मार्केट में अवेलेबल आहे। जेके माण्हू इहे सोचनि था त बाबा असां महांगा महांगा प्रोडक्ट अफोर्ड नथा करे सघूं, असांजी जेब असांखे इजाज़त कोन ॾींदी आहे, त तव्हां हाणे डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो यूज़ करे सघो था, जेको तव्हां इस्तेमाल करण खां फौरन बाद ई तव्हांखे रियलाइज़ थींदो त बाबा वाकई ही अहिड़ा प्रोडक्ट आहे जेके असां हमेशा खां इस्तेमाल करणु चाहियूं पिया, ऐं असांखे ख़बर नही, कोई गाइड न पियो करे या असांखे कोई ॿुधाए कोन पियो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि मार्केट में अवेलेबल आहे। चलो हाणे मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियो, ऐं तव्हां वञो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो परचेज़ कयो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे यूज़ करणु स्टार्ट कयो, चाहे तव्हां मर्द हज़रात आहियो, चाहे तव्हां ख़वातीन आहियो। बिल्कुल सुनाओ, पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए और मुझे बताइए वो कौन सा डर है जो औरत को खूबसूरत बनाता है, मर्द को भी खूबसूरत बनाता है, हाँ जी दोनों को खूबसूरत बनाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ नजीर कोसो भाई ज्वाइन कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, बलूचिस्तान से आप हमें सुन रहे हैं। कहते हैं कि दर्द अपना हो तो खामोश रहो, क्योंकि दुनिया को दर्द बताने वाले अक्सर तमाशाई बढ़ा लेते हैं, हम दर्द नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। फरवा हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे। आपकी तबीयत कैसी है? होप यू आर फाइन एंड वेरी नाइस। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हूँ, आप बताएं कैसी हैं? ठीक ठाक है। और बरकत रमादानी जमाली बलोच हमें सुन रहे हैं। जी आप भी हमें बलोचिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। और अबू हनीफ अल बलोची कहते हैं कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैंने तुमसे कितनी मोहब्बत की है? मैंने तुमसे मिले बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें छुए बगैर तुमसे मोहब्बत की है, मैंने तुम्हें देखे बगैर तुमसे मोहब्बत की है। क्या बात है भाईजान, बहुत बढ़िया हो गया ये तो। फरवा गुल हमें सुन रही है, आप ही अर्ज किया है, हम तो आज भी आपको याद करते हैं, तुम भूल गए, अच्छा तुम भूल भी गए, ये कमाल है। हाँ जी वाकई बहुत बड़ा कमाल है। और कहती है रिक्वेस्ट है जोड़ा आसमानते ठंडायन बाय ममताज मोलाई डेडिकेटेड स्पेशली आप और तमाम लिसनर्स के नाम। चले मैं कोशिश करती हूँ आपकी पसंद का गाना सुनेंगे। और दिया हमारे साथ ही, दिया क्या कहती है? दिया ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम डियर से सिद्रा मुस्कान, कैसी आप? उम्मीद के अपने नाम की तरह हंसती मुस्कुराती होंगी। जी जी। और कहती है कि हम भी आ गए आपके शो में, प्लीज प्ले निगत नखरा छुना मकया डेडिकेटेड स्पेशली रिमशा उरूसा हिरा एंड डेविल। ओके ओके, अच्छा फहीम भाई हमें सुन रहे, कहते कि नजर जी नजर के नजर न लगे कोई सुठो भी हिन कदर न लगे, तोखे डिठो आहे हिन नजर सां या हुन नजर हिन ही हुन में थोड़ो मां कंफ्यूज थी वेंदी आहियां। कहते कि जंहिं नज़र सां तोखे नज़र न लगे। अच्छा अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, अलैहि सलामत। कहते अदा छा हाल आहिनि, ख़ुश आहियो? सफ़ा चाक स्लेट कल मस्ती डबी हाओ, असां बि अची वियासीं प्रोग्राम ते लाजवाब आहे हमेशा जीअं अव्हां वांगे। थैंक यू सो मच प्यारा सोहणा भाउ, पोस्ट के लाइक और शेयर करते रहिएगा। अब्दुल गुलाम कैसर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं वेलकम जी, आपको भी वेलकम कहते हैं। रशीद खोसो भाई हमें सुन रहे हैं, हैदराबाद से आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं, थैंक यू। मुख्तियार अली लाशारी हमारे प्रोग्राम में मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं कैसे हैं। और फरवा कहती हैं लाइक और शेयर कर दिया आपका प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया। फहीम भाई आपने भी कर दिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ हैं, हली फोटो स्टाफ खान तमाम सुनो प्रोग्राम बुधो पाया, थैंक यू जी, थैंक यू। मोहम्मद राशिद अमान हमारे साथ ही, सिस्टर सिद्रा मुस्कान खुश रहे आमीन, आपका प्रोग्राम आपके प्रोग्राम का इंतजार रहता है, बहुत शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतें होती बस इस काबिल हमें समझ लेते हैं, वरना ना चीज इस काबिल का। ऐसे नारबानी कहती हैं अस्सलाम वालेकुम मौलाना सलामत, ओ माय फेवरेट आरजी मैडम मुस्कान जी, कैसियां? वेलकम कहते हैं दिल से आपको, गुर्दों से वेलकम कहते हैं। हजार भाई भी आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम हजार भाई। और ऐसे ही आप सब लोग पोस्ट को जरा लाइक और शेयर करते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ है जरा हम जाएंगे जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पर जाएंगे, आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और मुझे ना ये बताइए डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल किस किसने किया, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हो चुकी है, डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करने वाले हैं या फिर नहीं, ये भी मुझे बताइए। और टॉपिक को फॉलो करते जाइए, मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, जो कि आप इस्तेमाल करेंगे और खूबसूरत हो जाएंगे।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो, बुदंदा रहो।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream, kudrati jizan sa taiyar kayal, jeka de kudrati nikhar, saaf naram ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: This program is brought to you by
5: Bank Islamani Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing.
6: Dhar mashum warkoti warkoti kadamuna de yow niwi dunya palor rawanwi. Khuda polio ranz da kadamuna udrawale humshi. Nupadi waja da polio da har muhim pa mahal, da polio team da darwazi takulo jawab warkawai. Aukhpal mashumano ta da polio da makhniwi dwa saski warkawal mahirawai. زکه چه هم دغا ساس کی دا ماشومانو دا بدن دفاعی تا کس زیادوی او دا حقی دا خوبون و الوت وزری مومی پولیو یعنی مستقل مازوری
0: छा अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान, वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: अभी बुधो पिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
8: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
7: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: किया है सिंध जी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझा मस्त मलंग ही मारू डुंगर खा भी डाढा नियर नहीं का चीज में आहे लकी
2: ऐं कंध जो गोरो थियण। वधीक मालूमात ऐं इलाज जे लाइ बकाई यूनिवर्सिटी कराची जो सनद याफ़्ता डॉक्टर नदीम अख़्तर कोराई MBBS MPhil कराची यूनिवर्सिटी डिप्लोमा बकाई यूनिवर्सिटी कराची जो सनद याफ़्ता डॉक्टर नदीम अख़्तर कोराई MBBS MPhil कराची यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन डायबिटीज।

0: का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल मजूरी।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 8:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

जितने भी मुझे यहाँ पर कमेंट नजर आ रहे हैं वो जरा रीड कर लेते हैं। और हिदायत अल अहमदानी हमारे साथ खुदा से ओके ओके ओके। और हजार भाई कहते हैं कि वो डर है पर्दा जो औरत को खूबसूरत बनाता है ये टॉपिक। अच्छा फहीम भाई कहते हैं दादा क्या सर खाले चुने जो भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कर सही बाबा सही बाबा। हजार भाई कहते हैं कि आज का सॉन्ग प्ले करना सिस आज कोई अपनी पसंद का चली एआई का सही सही सही मैं लगाती हूँ भाई। हजार भाई एआई के गानों के जरा शौकीन हो चुके हैं। सही है भाई डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए आप डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी शौकीन हो जाएंगे। और तबीयत मेरी काफी बेहतर है आप बताएं कैसे हैं ठीक ठाक है। निधरी कहती है कि पोस्ट पर चैट नहीं करो आप लोग हमारे कमेंट गुम हो रहे हैं। ये बिल्कुल यही रीजन है जो लोग पोस्ट के ऊपर चैट कर रहे होते हैं ना फिर कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं। और चाचा खालिद हमारे साथ कहते हैं बंडल ऑफ थैंक्स बेटा। अच्छा फहीम भाई को बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं बताएं तो। इंतजार अली हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम ओके तमाम के भी चौथा भली करी आया। चाचा कहते हैं कि मेरी स्किन भी ऑयली है मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज करूं। आप डी स्किन फेस वॉश यूज कर सकते हैं डी स्किन की ब्यूटी क्रीम यूज कर सकते हैं दोनों प्रोडक्ट आपकी खूबसूरती को जो है ना वो बढ़ा

हांजी पहिरियां गुल छटियां पेर पो रखजां पंहिंजी गाॾी मां पेर पो रखजां हलाइजां अच्छा वफ़ा शहज़ाद हुसैन कोसो भाई में सुन रहे गरीबाबाद मोरी का तव्हां असांजो प्रोग्राम जॉइन कयो आहे मोहबतूं प्यारे सोने भाजू और इंतज़ार भाके ते टॉपिक पढ़ंदा हया और शर्म ओकी ओकी जी महर इरफान सियाल साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद कहते नाइस शो मैम आर जे आई एम लिसनिंग योर प्रोग्राम फ्रॉम शिकारपुर क्या बात है जी असां नानाणनि जे घोट वेठा शिकारपुर वारा माण्हू बि बार बार डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कनि पिया ऐं शिकारपुर में बि हर जॻह ते डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिली रही आहे मां पुछा कराई बिल्कुल मूंखे इहा खबर पई त बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम शिकारपुर में सफ़ा ज़ोरों शोरों से मिल रही है तो आप सारे लोग जितने भी शिकारपुर वाले लोग हमें सुन रहे हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप वहां से भी आराम से परचेज कर सकते हैं।

तव्हां बि नखरा कयो, तव्हांखे बि फुल मोकल आहे, पर पहिरियां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, ठीकु आहे? पोइ तव्हांखे नखरा बि ठहंदा। ओके जी, अर्ज़ मोहम्मद गोला भाई में सुन रहे हैं जेकब आबासी, आपने हमें ज्वाइन किया है, जबरदस्त कंपेयरिंग, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहें आप भी। और

चुकते हैं कि उस्ताद शागिर्द का पुछो तो बुधाए शादी ए जंग में केड़ो फर्क आए। शागिर्द एकदम आपने सही पहचाना दे। मुगल उमरानी भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। स्टीकर सामने शेयर कर दिए हैं। मीर मुमताज लिखा था बेहतरीन लाजवाब कंपेयरिंग गोट आगा खान जतोई लाड़काने का मीर मुमताज अली जतोई। एस मुमताज मोहम्मद मुदस्सर जतोई तमाम भाव जो मोहब्बत प्रोग्राम के जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज कयो बाबा जी स्किन ब्यूटी क्रीम तवाजे आए आई तमाम मर्द हजरा तमाम खवातीन हर कोई जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल आई फायदो हासिल करे सको था तो जी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो आई सुना सुना थी वनो।

दीजिए, आपका गाना भी लगा देंगे। निधि कहती अरे मेरे कमेंट्स भी नीचे रह गए नहीं ऊपर। जी फहीम, आपका जवाब मैंने देख लिया था और शायद पहला जवाब हम सुल्तान। ओके रमेश भाई, आपको भी वेलकम कहते हैं। जी यहाँ पर आप जब पोस्ट को लाइक और शेयर करती रहिए, ब्यूटी क्रीम का यूज करते रहिए। यहाँ पर टाइम हुआ है जी हम जरा न्यूज ब्रेक की जाने में जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड, व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by
4: Sona Yuya Granular. मिट्टी जो
5: भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनोअन अमल हुकूमत कराएगी. उसके अलावा हुकूमत

0: ईरान के तबाह करणो आहे, मैशियत सख़्त मुतासिर करणी आहे या कंहिं मुआहदे ताईं पहुचणो आहे, मामले ते जल्द वॾो फ़ैसिलो करण वारो आहियां। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरान बाबति टे ऑप्शन ॿुधाए छॾिया। अमेरिकी टीवी खे ॾिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जंग बाबति फ़ैसिलाती मरहले ते पहुची वियो आहियां। ईंदड़ ॾींहं में विच ओभर में वॾियूं तब्दीलियूं बि ॾिसण लाइ मिली सघनि थियूं। गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ीशान सां मुलाक़ात बि थी सघे थी। ईरानी फ़ौज जो कंहिं बि हमले जी सूरत में भरपूर जवाब ॾियण जो ऐलान। ख़ातमुन्नबिया हेडक्वार्टर जे तर्जुमान चयो आहे त ईरान ते हमिलो थियो त अमेरिका जा खिते में मौजूद समूरा अॾा निशाने ते हूंदा। अमेरिका साम्हूं हमलनि में सहकारी मुल्कनि खे बि बख़्श न कयो वेंदो। बलूचिस्तान जे पंजगोर वारे इलाइक़े में फोर्सिस जो ऑपरेशन हिंदुस्तानी फितने जा चार दहशतगर्द मारिजी विया। सिक्योरिटी ज़रियनि मौजूदु पंजगोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इतलाउ ते ऑपरेशन कयो वियो। फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जे चार दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो, हथियार हथ कया विया।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर, नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप एंड इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: هر ماشوم ورکوټي ورکوټي قدمونه د یو نوې دنیا په لور روان وي. خود پولیو رنز دا قدمونه درولې هم شي، نو په دې وجہ د پولیو د هر مهم په محل د پولیو ټیم د دروازې ټکولو جواب ورکوي او خپل ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي 2 ساسکي ورکول مه هیروي، ځکه چې هم دغه ساسکي د ماشومانو د بدن دفاعي طاقت زیاتوي او د هغې د خوبونو الوت وزر مومي. پولیو یعنی مستقل معذوری.
5: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز، بدندا رہو.

0: एक चूंटी जितनी हैसियत है तुम्हारी, यूं मसल के फेंक भी दूंगा ना, कोई ढूंढ नहीं पाएगा तुम।
1: तुम्हारे भाई ने गुनाह किया और उसकी सजा उससे मिलकर रहेगी।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज उदंदा।

उसमें चले जाइए और जनाब वहाँ से नाम लेकर तलब कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम जिसे आप सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ दो रातों में आपको अच्छा खासा रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है, तो जरूर से आप ट्राई करके देखिएगा। मैं तो चाहती हूँ आप सारे लोग इस्तेमाल कीजिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम। आपकी खूबसूरती में इजाफा लाने के साथ साथ आपके चेहरे को चमकाने वाली है और आपके चेहरे पर इतनी जबरदस्ती खूबसूरती लाएगी कि आप खुद ही कहेंगे कि भाई जान क्या बात है, हम पहले क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे थे। खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कर सकते हैं और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खूबसूरती सिर्फ मेकअप का नहीं, नाम जो होता है ना वो नहीं होता, बल्कि अपनी जिल्द की सफाई, मुनासिब केयर और रोजाना की अच्छी आदत भी आपको खूबसूरत बना सकती है। अगर आप ऐसा ही ख्याल रखते हैं कि भाई अपने चेहरे का ख्याल रखेंगे, रोजाना अपने चेहरे को डी स्किन फेस वॉश से हम जरा वॉश करते रहेंगे, क्लीन रखेंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का रोजाना हम इस्तेमाल करते रहेंगे, तो जब आप ये प्रोसेस डेली बेसिस के ऊपर जब यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आपको इतना खूबसूरत सा एहसास अपनी स्किन के अंदर महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा कि आप खुद ही कहेंगे भाई ये तो कमाल ही हो गया। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम हो या फिर डी स्किन फेस वॉश हो, ये दोनों चीजें आप साथ में यूज कीजिए। और जो लोग ऐसा कहते हैं ना हम क्रीमें नहीं लगाते, हमने कभी अपनी जिंदगी में क्रीम नहीं लगाई, या फिर उन्होंने पहले क्रीमें लगाई थी, उन क्रीमों ने आपकी स्किन के ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट नहीं दिया और उस वजह से आपको जो है ना थोड़ा सा ये आ चुका है कि भाई क्रीमें तो लगानी नहीं चाहिए क्योंकि क्रीमें अच्छी नहीं होती। जो खास करके लोग मैंने देखे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो क्रीमों से थोड़ा अवॉइड कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को ये मैं बता दें चलूँ कि जो क्रीमें होती है ना वो आपके चेहरे पर खूबसूरती लाने के लिए होती है। और खास करके जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन के फेस वॉश का यूज करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर जो रंगत आती है, जो निखार आता है, जो खूबसूरती आती है, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त आपको मिल जाएगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आपके चेहरे के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को अपने चेहरे पर अप्लाई करने के बहुत सारे फायदे हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप इस्तेमाल किस तरह से करेंगे ये चीज भी जरा आ जाती है। आप बोलेंगे कि भाई आप फायदे तो बता देती लेकिन डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज कैसे करना है ये तो आप बताती नहीं है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करना बहुत ज्यादा आसान है, ऐसा नहीं कि बस आपने कुछ रॉकेट साइंस लगा लेनी है। आपने बस रात के टाइम जो है ना सोने से पहले एक काम करना है कि अपना फेस वॉश करना है। अपना फेस वॉश करेंगे डी स्किन फेस वॉश से और फेस वॉश करने के बाद अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन कीजिए और क्लीन करने के बाद सुखा लीजिए चेहरे को। ऐसा होता है ना जिन लोगों के चेहरे की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है, ऑयली स्किन जिन लोगों की होती है, तो वो थोड़ा सा इस चीज को अवॉइड किया करें। जो वे फेस वॉश करने के फौरन बाद ही टॉवल से अपना फेस वॉश जो होता है ना फेस को सुखाने लग जाते हैं, तो टॉवल का यूज मैं तो कहती हूँ कि भाई अपनी जिंदगी से जरा आउट कर लीजिए। खास करके अपने फेस को मत पोछा करें टॉवल से, क्योंकि टॉवल के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आपके फेस पर आ जाते हैं, उससे फिर आपके चेहरे पर एक्नी जो है ना उसका रुझान काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप एक्नी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो कुछ आदतें अपने अंदर भी अपनानी होती है और कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का इंतखाब भी करना होता है। तो अच्छे से अपने चेहरे को वॉश कर लीजिए डी स्किन फेस वॉश से, उसके बाद चेहरे को ना सुखा लीजिए अच्छे से। उसके बाद आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है। उंगलियों की मदद से आराम आराम से प्यार से लगाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे के अंदर खुद ही जज्ब हो जाएगी। आपने मसाज बिल्कुल भी नहीं करना, बस प्यार से लगाइए, सुकून से लगाइए और लगाने के बाद जो है ना आपको इतना अच्छा प्यारा सा रिजल्ट मिल जाएगा। दो रातें जब आप लगातार यूज करेंगे तो आपको एहसास होगा कि भाई वाकई इतने अच्छे कमाल के हमें रिजल्ट मिल चुके हैं। आपकी रंगत में इजाफा होगा, आपके चेहरे पर जो ये खतरनाक से असरात होते हैं ना, जैसे आपके चेहरे पर एक्नी प्रॉब्लम है, एक्नी के निशानात हैं, या फिर आपकी स्किन काफी ज्यादा मुरझा सी चुकी है, तो वो तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। आपके चेहरे पर एक खूबसूरती होगी जो कि आप वाज़े देख सकते हैं। क्रीम का यूज आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने वाला है और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराएंगे तो जल्दी से डायल कीजिए 03-12-50-2590-7 है 03-27-34 नहीं नहीं थोड़ा गलत हो गया 03-27-38-4309 बुरी ट्रेस ओवर ट्री है 73-84-309 ये नंबर तुम्हें डायल करना पांजे करीबी जनरल स्टोर से। नंबर डायल करने का फौरन बाद ही तुम्हारे करीबी जनरल स्टोर से डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश अवेलेबल करायो विंदो। तो जल्दी जल्दी अवेलेबल करायो, पाने खूबसूरती जो ख्याल रखो यहाँ के बुधायो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम यूज कई कौन कई न कई आता छो न कई जल्दी कयो बाबा ऐसा पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो आई मुख्य बुधायो किथा किथा था असा के ज्वाइन कयो आए ए टॉपिक मुहा का पुछो के बुधायो जेको औरत के खूबसूरत बनाए छिंदो है।

अच्छा हिकड़ी ॻाल्हि यादि अची वई, पर छॾे साली कोन थी ॿुधायां मां. अच्छा अगरि तव्हां बि टी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूस कयो था त मूंखे लाज़मी ॿुधाइजो. यहां पर पैनल की जानिब आते हैं तो आपके मैसेजेस मुझे मिल चुके हैं जी, बहुत ज्यादा वाले, तो उनको भी जरा रीड कर लेते हैं. और सबसे पहले मुझे मैसेज किया है विरियाम अली.

हेलो। अच्छा बतूल मेमन हमारे साथ है। बतूल बिल्कुल आपका जो कमेंट था ना वो ऊपर चला गया था मेरी जान, आपको वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपने दोबारा से कमेंट शेयर कर दिया। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, आई एम बतूल फ्रॉम खांडो सिटी मटियारी से। आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है, अम्मी के साथ हम आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी आवाज कोयल की जैसी है। कल आपको मैंने सॉन्ग कहा था लेकिन आपने नहीं चलाया था, उस बात पर हम आपसे बहुत नाराज, इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो गए। वैसे गाना आपका मैंने ढूंढा था, मुझे मिला नहीं था, तो मैं कोशिश करती हूँ आपको कोई अच्छा सा गाना डेडिकेट कर देंगे। ठीक है जी, बतूल मुझसे नाराज मत होइए और अपनी अम्मी को भी बोलिए मुझसे नाराज मत होइए, क्योंकि जो लोग मुझसे नाराज हो जाते हैं फिर मुझे मनाना नहीं आता, तो फिर मैं क्या करूँ। तो खुद ही राजी हो जाइए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए। हिदायतुल्लाह कहते हैं हाँ जी बिल्कुल आपकी पसंद का गाना सुन लिया। अली रजा लगारी हमें सुन रहे हैं जी। वोट हाजी गुलाम खास के लिए, लग झंडो मरी खां कुर्बान अली खास के लिए, अली रजा लगारी तां सगर मौजूद आए। थैंक यू।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: It's 2:30 PM. This time check is brought to you by
2: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी। Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
3: This program is brought to you by
4: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया compliant gold based financing.
5: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
6: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए FM 91.6।

क्या बात है, वापस आ चुके हैं जी दोबारा से हमारे लास्ट और सैडी लिंक में. आप कहते हैं ना सिद्रा के प्रोग्राम का जो लास्ट लिंक होता है वो सैडी लिंक होता है, वो इसलिए क्योंकि मैं सारे जितने भी आपके सैडी वाले गाने होते हैं उठा के भी लास्ट लिंक में फेंक देती हूँ. मैं कहती हूँ ये सारे तो हम लास्ट लिंक में ही सुनेंगे. तो बिल्कुल आप लोगों को वेलकम कहते हैं, और साथ साथ यहाँ पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे ही नहीं बताएं तो बताएं तो बताएं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों की खूबसूरती के लिए भाई बहुत ही ज्यादा जरूरी है. जरूरी इसलिए कहती हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे ऊट पटांग वाले प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा के देख लिए हैं, लेकिन अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ना ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है, और मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ ये आपकी स्किन के लिए 2-in-1 फार्मूला भी है. यानी कि आप लोगों के लिए नाइट क्रीम तो हो ही गई, लेकिन इसके साथ साथ जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को यूज करते हैं तो आप लोगों को फेशियल वाला रिजल्ट मिलता है. फेशियल ऐसा वैसा, बहुत महंगा वाला फेशियल, बिल्कुल वैसा रिजल्ट मिलता है क्योंकि इसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स है. ये जो वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स का मैं जिक्र करती हूँ ना, वो इसलिए करती हूँ क्योंकि ये दोनों जो चीजें ना बहुत प्रीमियम है, बहुत खास है, और ये बहुत लिमिटेड प्रोडक्ट के अंदर एड की जाती है. अगर हम बात करें यहाँ पर वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स की, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 से 3 ही प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर वाइटामिन ई बीड्स और माइक्रो बीड्स को एड किया गया है. तो इसी वजह से डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जो क्वालिटी है वो इतनी बेस्ट है कि जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो ही जाएगा. तो मर्द हजरात हैं, खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है. एक और मजे की बात है कि भाई इस्तेमाल करने के बाद ही आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि वाकई आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खूबसूरती की बात हो और डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर किया जाए, बाबा ये कैसे चलेगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इग्नोर नहीं कीजिए भाई, डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिए. डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपके चेहरे पर ये जो जमा हो चुके होते हैं ना एक्नी प्रॉब्लम्स, या फिर आपके चेहरे पर जो ये एक्नी के निशानात होते हैं या रिंकल्स आ चुके होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिनको आप कई टाइम से फेस कर रहे हैं लेकिन आपको सोल्यूशन का पता ही नहीं, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करके उन तमाम चीजों को खत्म करना है अपनी स्किन से, और आपको पता चल जाएगा कि भाई वाकई सिद्रा इतना बताती है तो क्यों बताती है, क्योंकि भाई गाल में दम होता है, प्रोडक्ट में भी दम आए. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज करो सोना सोना थी वैसे.

अहिड़ा सिंगार कया अथई सवा कुंवार लॻे थी तव्हांखे कुंवार लॻण जी ज़रूरत न आहे पर बसि तव्हां इन्हनि सिंगारनि खां थोरो पाण खे बचाइण चाहियो था छो त मेकअप जॾहिं तव्हां पंहिंजे चहिरे ते अप्लाई कंदा न मेकअप जा खोड़ सारा साइड इफेक्ट तव्हांखे मिली सघनि था पर उन्हनि चीज़ुनि खे अगरि तव्हां साइड रखो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो साईं वाह वाह थी वेंदी सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करियो डी स्किन जो फेस वॉश बि तव्हांखे मिले पियो तव्हां कॾहिं बि जनरल स्टोर ते वञो या नथा मिलनि त पोइ तव्हां जल्दी जल्दी नंबर ते राबितो करे सघो था ऐं नंबर ते पूरे प्रोग्राम में तव्हांखे ॿुधाईंदी आहियां ऐं जेको मां चई वियसि त बाबा मोटी अचां ब्रेक खां पोइ त तव्हांखे नंबर हिकु करे ॿुधायां थी तो तव्हांखे नंबर हिकु करे ॿुधायां थी तव्हां नोट करे वठो ठीकु आहे ओगिरी सौ पहिरियों नंबर आहे 2 3 5 2 5 9 7 ऐं ॿियो नंबर आहे 3 3 7 3 8 4 3 9 साउंड सो फनी

0: गानो साई भलो यो गानो वणी वयो ॿुधाए त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो या कोन डी स्किन ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल खां फौरन बाद तव्हांजी चहिरे ते एॾी ख़ूबसूरती अची वेंदी तव्हांखां माण्हू वरी वरी पुछंदा ॿुधायो त सही ॾींहुं ख़ूबसूरती काॾां आंदी अथव ऐं तव्हां हुननि खे ॿुधायो बाबा ही कमाल आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम नथी मिले त पोइ तव्हां नंबर ते राबितो करे वठो ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल कराए वठो ठीक हो गया अच्छा ये फ़ाइज़ा अली की आवाज़ में गाना है जो की मेरा फेवरेट है इसीलिए मैंने लगा ली वरना शायद नहीं लगाती ॾिसो ॾिसो मां केॾी सेल्फिश आहियां
1: रचाई किथे राहे प्यार
0: ओके जी हमारे साथ ये फजली मौजूद है कहती है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम हैप्पी मंडे आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आज सिस्टर सजा मुस्कान कैसी हो डियर स्वीटी मैं बहुत अच्छी तुम बताओ कैसी हो मजे में और दर्दे दिल हमारा शो सुन रही है थैंक यू वेरी मच दर्दे दिल और मुनव्वर भाई बस कर जाए महबूब अली मोरो सिटी से हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम कहते हैं FM रेडियो की कून से खुश रहो हमेशा के लिए आमीन आमीन आमीन और कहते हैं कून जलाल का सॉन्ग तो प्ले करो प्लीज थोड़ो तहां के अचण में लेट थी वही है

चिकी रहियो बाबा। असराज में जतोई भाई में सुन रहे हैं सऊदी अरबिया से। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं भाई जान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। दर्द दिल वालेकुम अस्सलाम स्वीटी, आपको भी वेलकम हो गया। हजार भाई कहते हैं गलत बात नहीं सिस्टर, सच्ची बात है। कौन सी बात है, किसकी बात है, कैसी बात है? अच्छा मुख्तार लाशारी भाई आपने टॉपिक का जवाब दिया है, ठीक है जी, थैंक यू। दर्दे दिल कहती है मेरा कमेंट, आपका कमेंट जी बिल्कुल हो गया हो गया। निदली कहती है डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी ओ ये जी।

छा पे गाना है कैसी था बचंदी दिल सही गाला सही गाला ऐं तहां भी केस ताईं बचंदा तहां सभिनी खे पकड़ी पकड़ी थी स्किन ब्यूटी क्रीम जो यूज़ कराईंदमि ॾिसजो बि स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल जंहिंजी न आहे कयो बाबा करे वठो अञा टाइम अथव ऐं स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते मिली रही आहे सो वञो ऐं वठी अचो।

की फरवा की पसंद अच्छी है सुठा सुठा गाना फरमाइश कर दिया छोकरी वरियाम कहते हैं सदरा शाम वाले प्रोग्राम में सॉन्ग प्ले कंदा हाजिर हाजिर बिल्कुल यो प्रोग्राम गानो मतलब तांज लाए शाम वाले प्रोग्राम में हलाए छड़ींदा से ठीक है याद कंदो थोड़ो हो जे अच्छा ये हमने गाना लगाया है निदा के चॉइस के ऊपर सो हम सुनेंगे अच्छा ये आपके कॉमेंट्स भी बड़ी जमा हो चुके हैं तो अच्छा ये तो रिमेक्स में चल गया है चलो इसको छोड़कर हम जो है ना वो ओरिजिनल वाला सुनेंगे

की क्या बात है, टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, मुझे जल्दी से बताइए, क्योंकि टी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तभी तो खूबसूरत होंगे। तो टी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज करने वाले लोगों से पूछिए जरा कि टी स्किन ब्यूटी क्रीम उनको कितना खूबसूरत बना चुकी है। तो अब आपकी बारी है, जाइए टी स्किन ब्यूटी क्रीम को परचेज कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो सके। अब्दुल गफार भाई हमें सुन रहे हैं, खुश आमदीद, प्यारे भाई को वेलकम कहते हैं, बतूल बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, ठीक ठाक है, मजे में हैं। अच्छा मोहम्मद जमान भाई आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। सिकंदर सालार सिकंदर हमारे साथ हैं, मुमताज वाले का गाना हम सुन चुके हैं पहले से ही, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं। और जी हैं हमारे साथ एसन, कहते हैं कि सबसे पहले वो बात बताओ हम नहीं छोड़ेंगे आपको, कौन सी बात थी, मैं तो भूल ही गई, पता नहीं कौन सी बात थी। उस टाइम कहते ना

कि शादी की बिरयानी खाने की कोई उम्मीद नहीं। तो बस इरम को बोलिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपको दो रातों में इतना गोरा चट्टा प्यारा बना देगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि भाई क्या लगाया है, क्या लगाया है बताएं। तो उन्हें बताइएगा जनाब ये डी स्किन ब्यूटी क्रीम का कमाल है, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपके खूबसूरती के लिए बहुत ही ज्यादा लोग इस्तेमाल कर। चलिए जी, दिमागी दही बनाने के बाद एक बहुत ही सुंदर सा गाना आप लोगों के समातों की नजर। इस गाने की फरमाइश हमें माहीन ने कर दी थी।

0: क्रीम्स।
1: आप भी डे स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए और डी स्किन का फेस वॉश ऑलरेडी जो लोग यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगा रहे लेकिन उनको डी स्किन का फेस वॉश अभी तक नहीं मिला तो आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी अवेलेबल और खूबसूरत। अच्छा मोहसिन रजा एंड राजा लाशारी सुन रही है हमारा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम VIP है, वो डायलॉग सुनाओ। सुनो जाना मैं बोलने ही वाली थी क्योंकि इसकी डायरी रखी थी। कोइंसिडेंस। मंजूर अली खास के लिए हमें सुन रहे हैं झंडो मरी से, भाई आपका भी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। तो मेरे पास एक शायरी है वो जरा हम पढ़ लेते हैं।

बिल्कुल हिदायतुल्लाह, फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं जरा ये आरजे वारजे छोड़कर सिंगिंग की दुनिया में आ जाती हूँ। हाँ जी, आपके कानों को खराब करने की जो है ना वो मैंने जरा कसम खा रखी है तो। और इसी के साथ हमारे जाने का वक्त भी बड़ा करीब आ चुका है। फरवा, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रही हैं, थैंक यू। नरेश भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपने। भाई आपका गाना रहा हम पथ तमाम पंच बजे वाली प्रोग्राम में सुपांजो का गलती थी मुझे था। डी स्किन ब्यूटी क्रीम का यूज कीजिएगा, ये आपको सस्ते दामों में मिल जाएगी, मुनासिब कीमतों में डी स्किन ब्यूटी क्रीम अवेलेबल है, तो जाइए परचेज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। सो मोकलानी नाही बाबू, सिंह सलामत, साथ सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: प्यार हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो
2: It's 3 p.m. This time check is brought to you
3: Ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz A product by Biocon International Pakistan
4: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News
5: Brought to you by
6: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो

0: निकले तो रोड के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें।
1: वंस फॉर ऑल कोई ना कोई चीज करेंगे, बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
2: इस्लामाबाद ते कंखे भी चढ़ाई करण न डींदासीं। हिन भेरे वंस फॉर ऑल थींदो। केवीके जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे, बंद घिटी तरफ़ न वञे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो। लाहौर मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो आहे त लांग मार थियो त हाईकोर्ट फ़ैसिले ते रूह मूजिब अमल कयो वेंदो। हिन भेरे ईअं न थींदो। पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे। हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो। अफ़ग़ानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ताईं मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थियो आहे। हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रूपये में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो। पीटीआई बानी जूं टई भेनरूं लाहौर में नज़रबंद। अलीमा ख़ान खां पोइ उज़्मा ऐं नौरीन नियाज़ीअ खे बि नज़रबंद करे कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। डीसी लाहौर जो चवण आहे त पुलिस जी सिफ़ारिश ते 3 MPO तहत ॿिन्ही भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो।
3: नए सुबह वाला मामला जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है, और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं, तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा

0: उम्मीद हूँ कि बड़ा पूरी जरूर बनेंगे और इस बाद में कि सुबह वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
1: घरू वजीर मोहसिन नकवी नवन सूबन वारी होद ते कायम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो आहे त नवन सूबन वारो मामलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे। अला चाहियो आहे आवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूर ठहंदा। सूबन वारो मामलो थधे या गरम खां घणो अॻिते आहे। वॾे वज़ीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सेप्टेम्बर ताईं जारी रहंदी। 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो खां बचाव वारा फोड़ा पीआरिया वेंदा। इफ़्तिताही तक़रीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो आहे त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो ख़तम कयो वेंदो। पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। आलम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कनि। कराची में मंशियात विकिरो कंदड़नि मंशियात छॾे ॾिनी। पाणी विकिरो करणु शुरू कयो आहे। हीरोइन विकिरो कंदड़ पकड़जी पवनि था। पाणी विकिरो कंदड़ सेनेटर थी वञनि था। कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अभी बुधो प्यार GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उडाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 जो आवाज।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: जीए एफएम नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91 सिंध जो दंदारो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: 8:45 PM दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: बैंक इस्लामी लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
4: दुनिया के ज्यादातर मुमालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो मुमालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
5: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
6: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके तो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो।

0: ऐं पंहिंजे ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा ॿ कतरा ज़रूर पीआरियो, छो त इहे कतरा ॿारनि में मुदाफ़ती ताक़त खे वधाइनि था ऐं इन्हनि जे ख़्वाबनि खे उॾाम ॾियनि था। पोलियो मतलब ज़िंदगी भर जी माज़ूरी।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: चट्टी।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मां
4: में वरी तब्दीलियूं भी ॾिसण लाइ मिलंदियूं। गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान सां बि मुलाक़ात थी सघे थी। अमेरिका नओं हमिलो कयो त जवाब पहिरीं खां वधीक ख़तरनाक हथियारनि सां ॾिनो वेंदो। ईरानी फ़ौज ख़बरदार करे छॾियो। पासदार इनकलाब जे तर्जुमान हुसैन चयो आहे त अमेरिका नओं हमिलो कयो त

0: कंडो आदम में गटरन जो गंदो पानी शाख में छोड़ करण खिलाफ आबादगारन जो एहतजाज। आबादगारन चयो त मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में गटरन जो गंदो पाणी माइनर में छोड़ कयो पियो वञे। ज़मीनूं सुकी वयूं आहिनि। गोठाणा ज़हरीलो पाणी वापराइण सां बीमारियुनि में मुबतला थी विया आहिनि। माइनर में गंदे पाणी जो निकाल बंदि कयो वञे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी हाणे अवां खे परेशान थियण जी का भी ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुबतला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक आहे। होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GAFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड,

0: एक कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: धर माशूम वरकोटी वरकोटी कदमुना देयो निवी दुनिया पलोर रवानवी, खुदा पोलियो रंज दा कदमुना उद्रवले हुमशी। नुपदी वजह द पोलियो द हर मुहिम पा महाल द पोलियो टीम द दरवाजे टकोलो जवाब वरकवई, अखपल माशुमानो ता द पोलियो द मखनिवी द्व सास्की वरकवल महेरवई। जका चुहम द गसास्की द माशुमानो द बदन दिफाई ताकत ज्यातवी औ द हगी द खूबुन वलवत वजरी मुमी। पोलियो यानी मुस्तकिल माजूरी।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: दुनिया।
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: ब्रॉट टू यू बाय
3: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
4: ताई निशानो ना है बनायो
5: अगर वो लॉन्ग मार्च के लिए आते हैं तो जिस तरह पिछली दफा बात हुई थी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे इस दफा हम कमी छोड़ेंगे या कोई लूप होल है जो छोड़ेंगे उनकी लीडरशिप में मेजोरिटी लोग जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहते लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनोन अमल हुकूमत कराएगी उसके अलावा हुकूमत का अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी मैं एक चीज कहूंगा खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकलें और आप जिस अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें
6: इस दफा वंस फॉर ऑल को ना कोई चीज करेंगे ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते
4: इस्लामाबाद ते कंखे भी चढ़ाई करण न दींदी इन भेरे वन फॉर ऑल थो केपीके जो हालतू सभी के सामू आन पीटीआई वट अजा भी वक्त है बंद घिटी तरफ न वे वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी खबरदार कर छो लाहौर में मीडिया से गाले मोहसिन नकवी त लॉन्ग मार्च थो तो हाईकोर्ट के फैसले से रूह मौजूब अमल किया भेरे ये नो तो पीटीआई वारा अचन ए मुल्क दह या वी डीन से बंद थी वे इन भेरे मुस्तकिल हल कडो वो अफगानिस्तान से लागापा दहशतगर्दन के रोकण तीन मामूल से नईदा आर्मी मार्केट के हिसाब से तेल महंगो थन्द है हालतू बरकरार रही तो हजार रूपये में भी लीटर पेट्रोल न मिल पीटीआई बानी जू टे भेनरू लाहौर में नजरबंद अलीमा खान का पो उज़्मा नौरीन रियाज के भी नजरबंद कर मुंतकिल किया डीसी लाहौर जो चवण है तो पुलिस की सिफारिश से थ्री एमपीओ तहत बई भेनर के टीह डीन लाय कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गुजरे ढी अलीमा खान के भी नजरबंद किया हो
7: इंशाल्लाह ताला नए सुबह वाला मामला जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है और चाहे वो ट्रेडर्स हैं चाहे चैम्बर्स हैं चाहे ट्रेडर्स हैं चाहे किसान हैं तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अल्लाह ताला ने चाहा तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबह जरूर बनेंगे और इस बाद में कि सुबह वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है
4: घरू वजीर मोहसिन नकवी नवन सूबन वारो होर्ड ते कायम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नकवी चयो आहे त नवन सूबन वारो मामलो असांजी सोच खां वधीक तेजी सां अॻिते वधी रहियो आहे अलाह चाहियो ऐं अवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवा सूबा ज़रूर ठहंदा सूबन वारो मामलो थदे या गरम खां घणो अॻिते आहे वरे वज़ीर सिंध में पोलियो मुहिम जो इब्तिदा करे छॾियो अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सितंबर ताईं जारी रहंदी 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो खां बचाव वारा फुड़ा पीआरिया वेंदा इब्तिदाई तकरीब खे ख़िताब कंदे वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो मुहिम ख़त्म कयो वेंदो पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़ ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी आलम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कनि मनशात विकरो कंदड़ मनशात छॾे पाणी विकरो करण शुरू कयो आहे हीरोइन विकणंदड़ पकड़िजी पवनि था पाणी विकरो कंदड़ सेनेटर बणजी वञनि था कराची में तकरीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त जंहिंजे हथ में पाणी फराहम करण आहे उहे ई टैंकर हलाए रहिया आहिनि हाणे बि ॿारनि खे कुतनि जे चक खां नथा बचाए सघूं जन माण्हुनि जो कारोबार अरबे रूपयनि जो आहे उहे माण्हू पाणी कीअं फराहम कंदा मौजूदा निज़ाम तहत पाकिस्तान नथो हली सघे पेट्रोलियम लेवी खिलाफ़ जमायत इस्लामी जो कराची खां निकतल ट्रेन मार्च सखर पहुची वियो मुख्तलिफ़ शहरनि मां गुज़रण दौरान ट्रेन मार्च जो शानदार आदर भाव सखर में जमायत इस्लामी हाफिज़ नईम चयो आहे त मार्च जो पहिरियों मरलो कामयाब वापसि वठणी बलोचिस्तान जे ऑपरेशन मारिजी विया सिक्योरिटी ज़रिए मौजूद पंजगोर जे ॿिनि इलाइक़नि में ॻुझी इलाइक़े ऑपरेशन कयो वियो फोर्सिस जे ऑपरेशन दौरान हिंदुस्तानी फितने जे 4 दहशतगर्दनि खे जहनो भेड़ो कयो वियो हथियार कया विया सिंध जे मुख्य इलाइक़नि में ॿिनि औरतनि समेत 4 ॼणा क़तल घोटी भरिसां भाए टे कारे इल्ज़ाम हेठि पुफी खे क़तल करे छॾियो मोहम्मदपुर में जवाबदार वकार माची 16 सालनि जी مفتی حفیظہ کے کوڑن جا وار کرے قتل کر شکارپور میں کالج روڈ تے ہتھیار بندن نوجوان سمر علی جسکانی کے قتل کر اعزاز سنجرانی زخمی بنگو بین فرساں گوٹ وستڑو میں بارن جی گال سان سولنگی برادری کے بن دھرن میں جھیڑو لٹھن لگن سبب نوجوان جلال سولنگی قتل نوشے رو فروز میں فوجی اسٹیشن ویجو گوٹ دریا خان میں جوابدار زال کے قتل کرن بعد پان تے فائر کرے چھڑیو جوابدار شفیق راج پر زال نواب زادی کے قتل کرن بعد پان تے بھی فائر کرے چھڑیو زخمی حالت میں اسپتال منتقل

सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच सखर में घोटी जी फहमिदा कताफी केस जी बुधनी थी आई जी सिंध ए घरू सेक्रेटरी पेश न थे। अदालत पुलिस के नारी जी बाजियाब लाइ बिन हफ्तन की मोहलत लई छी। बुधनी दौरान एडिशनल आई जी डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान एसएसपी घोटी एएसपी सखर ए पेश थे। एडिशनल आई जी रिपोर्ट जमा कराईन्दे चयो तो नारी के बाजियाब कराने लाइ कोशिशू जारी आन। बासठ सरदार खां कमेटी जोड़ी पुछागाछा कई वई है। वापारी मीरजा के मुलाजिम जा पुलिस से संगीन इल्जाम। कमीशन मीरजा के दोस्त मुलाजिम बिजनेस पार्टनर्स ए डीजी हेल्थ जा बयान कलम बंद करे वरता। मीरजा के दोस्त कमीशन के बुधायो त मीरजा सा कारोबार बाबत 20 लखन की जरूरत ते गालू थी हुई। मीरजा के मुलाजिम काजिम अदालती कमीशन के बुधायो त पुलिस मीरजा के घरवारन सा न मिलन एतजाज में शामिल न थियण जो चयो। पुलिस कागजी कार्रवाई का सिवाय मुखा फोन वरती। कंदकोट भरसा हथियारबंदन की फायरिंग। रिटायर्ड हेड कांस्टेबल जफर सिंजरानी कतल। पुलिस मूजिब साल पहले इंदस हाईवे मुकाबले में बंगवार बिरादरी जहा टे दुआरी मार वाया हुआ। पलांद में बंगवार बिरादरी के हथियारबंदन रिटायर्ड पुलिस अहलकार जफर सिंजरानी के कतल कयो है। जवाबदार के गिरफ्तार कयो वेंदो। कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरिफ साकी ते तशद्दुद धमकिन वारो मामलो हल थी वयो। जवाबदार कुरैन शाह प्रोफेसर आरिफ साकी विच में ठा थी वयो। वकील जो चवण है त कुरैन शाह की जमानत वाली दरख्वास्त प्रोफेसर आरिफ साकी पारा एनओसी जमा कराई वही। बिन्हीं धुरीन पारा सुलहनामो भी जमा कराई वो। वासा मुलाजमन जो अरड़ा महीन का पगारू ए पेंशन न मिलने खिलाफ एहतजाज मुजाहन चो। एहतजाज बाद वी महीन बदरा रुगो बिन महीन जो पगारू डिन्हीं वयू। सीईओ ए बे ऑफिसर हर महीने लखे रुपया पगारू ए मराठू वी रहा पर असा के हक न मिले तो पगारू ए पेंशन जारी करे परेशानी खत्म कई वे। आबाद के गोर नगर खान बिरोही वासी टी पुट नूरियाबाद भरसा गुम वारसन के अगवा जो शक रवे ने मुलाजिम एजाज बिरोही ए संदस पुट शफाक बिरोही कराची का वापस ईन्दे नूरियाबाद वटा गुम थे। वारसन वजू गोबिन से आखिरी भेरों नूरियाबाद वट राबो थो। डीआईजी हैदराबाद नोट्स वे वी डी अग कतल कल नौजवान के वारसन जो पाक किताब खड़ी एहतजाज मकबूल सजाद चांडियो के वारसन 3 किलोमीटर पैदल मार्च करे प्रेस क्लब अगे एहतजाज कर। वारसन चो तो गोठ हासिल कोसो में जवाबदार मामूली गाल नौजवान के कतल कर। पुलिस जवाबदार के गिरफ्तार न कर दी है। मेट्रिक की शागिर्दियाणी से ज्यादती वीडियो भी रिकॉर्ड कर वो। गाड़ी बोरे वासण शागिर्दियाणी जो एहतजाज। जवाबदार खिलाफ कार्रवाई का मुतालबो। मुतासिर नारी चो तो फर्ज उन हथियार के जोर से लजल जो निशानो बनाया। वीडियो रिकॉर्ड कई पुलिस बासठ के बंगारो बने लाइ इंसाफ न मिलो तो आपघात करी छी।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: खुशखबरी। हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिनि। अल्हम्दुलिल्लाह केतराई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिनि। अवां बि एक दफो आज़माए ॾिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर जी सहूलियत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम ऐं ॾींहुं हर छंछर खां खमीस ताईं सुबुह जो 10 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुराणी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे साम्हूं, नया पुल, हैदराबाद। वधीक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।

0: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

वेलकम बैक मुझे सामाइन GFM 88 रेडियो नेटवर्क अमा सण वो खातिब है मोहब्बतुन ऐं मुर्कुनि जे अॼोके मेले में असीं अमा सण वो खातिब आहियूं ऐं यकीन प्यार ऐं पंहिंजाए पंहिंजे गसनि ते विख विख ते लफ़्ज़नि जा गुलाब अमां जे ख़िदमत में असां ऑफर कंदासीं अमां खे यकीन भलीकार बि चवंदा रहंदासीं तव्हांजूं मोहबतूं आहिनि सदाई सुखिया हुजो ऐं शाल वञी मुर्क में अहिड़ी न थिए अहिड़ियूं दुआऊं असां झोल झोल भरे तव्हांजे लाइ कंदासीं ऐं इहे दुआऊं अमां जे लाइ बार बार हज़ार बार कंदासीं सो दोस्तो महिरबानो कदरदानो भेनरो ऐं भाइरो जेकॾहिं मुंहिंजो आवाज़ तव्हां ताईं पहुचे पियो रेडियो सेट या इंटरनेट या थ्रू त तव्हां देर न करियो बसि हाणे ई शामिल थी सघो था मैसेज करण जो तरीक़ो बिल्कुलु SMS टाइप कंदो पहिरीं पहिरीं तव्हां टाइप कंदो MTI जी हा मैसेज वारे पेट ते वञी MTI लिखण खां पोइ थोरो स्पेस ॾेई पंहिंजे ॻोठ जो पंहिंजे शहर जो नालो लिखो उन खां पोइ पंहिंजो नालो बि लिखिजो ऐं सेंड कजो मैसेज जेको असांजो नंबर आहे उहो नंबर आहे 888 यानी 888 88 81 16 सिंधीअ में चइबो उन नंबर खे अवां मोकिलियो मैसेज त तव्हांजा मैसेज दिलि सां शामिल करे वठूं अंगण आय में ईद आऊं सॼो ई आजियां दिल में जंहिं लाइ दीद में भर में भेड़ो सोपी सो ही जेके मोहबती महफ़िलूं आहिनि उन्हनि महफ़िलुनि में अवांजा मैसेज अचण लाज़मी हूंदा अवांजा मैसेज ईंदा त कंदासीं शामिल ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी त अॼु असां सां गॾु केरु हूंदो ऐं केरु असांजे हिननि इंतज़ार जे घड़ियुनि खे ख़तमु कंदो बाक़ी जेके मैसेज तव्हांजा असांखे जीअं जीअं पहुचंदा शामिल कंदासीं असांखे दोस्तो महिरबानो कदरदानो हिकिड़ो मैसेज पहुतो आहे जंहिंमें लिखियलु आहे त अस्सलाम वालेकुम ऐं ॻोठ आहे नोटो ऐं नोटो खां असांखे यादि कयो आहे रामचंद कुमार कोहली साहिब ऐं गोविंद गुल अवां सां गॾु थैंक यू जी कमलेश तव्हां सां गॾु ॿुधे पियो किरोड़े कुर्ब कमलेश ऐं रामचंद तव्हांजो मोहबतूं तव्हां असांखे ॿुधो था अव्हांजा वॾा वर्ड जो तव्हां असांखे ज्वाइन कयो आहे मोहबतूं सदाई सुखिया हुजो लुटको मोरी खां असांखे ॿुधे थो अब्दुल रहीम अब्दुरहमान लगारी ओके ऐं मिठा खान लगारी तालिब हुसैन लगारी अव्हां सां गॾिजी ॿुधनि पिया अव्हां जूं मोहबतूं ऐं मण मोहबतूं तव्हां जूं थैंक यू अव्हां बि ख़ुशि हुजो आबाद हुजो थैंक यू भलीकार चवंदासीं ऐं जनाब असांखे झलूरी जा मैसेज आहिनि लिखियल कुझु कोन लिखियल आहे सर कॉल जो नंबर कहिड़ो हूंदो उहो नंबर ॿुधाईंदासीं जॾहिं कॉल्स वठंदासीं तॾहिं नंबर ॿुधाईंदासीं ऐं तव्हां साण बिल्कुलु शेयर कंदासीं त कहिड़ो नंबर हूंदो जंहिं ते तव्हां असांखे कॉल कंदा तेसि ताईं नोट करे वठो नंबर जंहिं ते मैसेज कंदो MTI स्पेस ॾियो पंहिंजे ॻोठ ऐं शहर जो नालो लिखो पंहिंजो नालो लिखो ऐं 888 88 81 ते मैसेज हाणे ई मोकिले छॾियो ॾिसंदासीं त अॼोके असांजे हिन बज़म में शामिल थियण लाइ केरु केरु अचण वारो आहे कंहिंजो मैसेज असां वटि ईंदो त पोइ उहे समूरियूं ॻाल्हियूं तव्हां सां कंदासीं पर पहिरीं ट्रैक ॾांहुं हली वठूं ट्रैक खां पोइ तव्हांजा काफ़ी मैसेज असां वटि टैक्स्ट मौजूदु आहिनि जेके शामिल करणा आहिनि थोरो इंतज़ार कजो ही ट्रैक तव्हांजे नाम कयूं था सादिक फ़क़ीर जी सदा आहे सादिक फ़क़ीर साईं जेतोणीक असां वटि नाहिनि रहिया पर हुन जो आवाज़ असां वटि तव्हां क़यामत हूंदो अचो त गॾिजी ॿुधूं हू परे आहे परे आहे परे आहे

जी जनाबी ट्रैक बुधंदा बुधंदा कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं थोड़ी देर का गड हुंदासीं कि ॾिण मुंहिंजो छो त प्रोग्राम आहे जारी हो सारी नंढड़े ब्रेक खां पोइ वापसि ईंदो अवांजो पंहिंजो यूनिस बकारी।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।
2: दुनिया के ज्यादा

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है। हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
2: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, उधंदा रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज़।
3: जी FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

मैसेज जेको नामेलू माग खा नामेलू मेहरबान लिखियो यानी रुगो लिखियल है अदा सलाम यानी पेंजो नालो गोठ वगैरह कौन लिखियो अदा अखियन ते वालेकुम अस्सलाम पर जने भी लिखो

0: वैसे जेको नामेलू माग खा नामेलू मेहरबान लिखियो यानी रुगो लिखियल है अदा सलाम
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज बुदंदा रहो
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दारा।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: अमरीका नव हमलो कयो त जवाब पहिरीं खां वधीक खतरनाक हथियारनि सां ॾिनो वेंदो। ईरानी फ़ौज ख़बरदार करे छॾियो। पासदारान इनकलाब जे तर्जमान हुसैन मोहबी चयो आहे त अमरीका नओं हमलो कयो त ईरान बि नवां हथियार इस्तेमाल कंदो। अमरीकी अॾनि सां गॾु अहिड़नि हंधनि खे बि निशानो बणाईंदासीं जिन खे अञा ताईं निशानो नाहे बणायो वियो।
1: नमाज के लिए आते हैं तो जिस तरह पिछली दफा बात हुई थी कि कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे इस दफा हम कमी छोड़ेंगे या कोई लूप होल है जो छोड़ेंगे, उनकी लीडरशिप में मेजोरिटी लोग जो है वो नमाज नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी भी सूरत में वो करेंगे तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर मौजूद है और उसके ऊपर मनवान अमल हुकूमत कराएगी। उस पर अपना फर्ज भी यही है जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होगी। मैं एक चीज कहूंगा, खुदारा इस सारी अपनी सियासत से निकलें और आप जिस अप्रोच के ऊपर जा रहे हैं उससे अपना और अपने लोगों का नुकसान ना करें।
2: वंस फॉर ऑल को ना कोई चीज करेंगे, ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकते।
0: इस्लामाबाद ते कंहिंखे बि चढ़ाई करण जी इजाज़त न ॾींदासीं, हिन भेरे वंस फॉर ऑल थींदो। ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जूं हालतूं सभिनी जे साम्हूं आहिनि। पीटीआई वटि अञा बि वक़्तु आहे त बंद घेटीअ तरफ़ न वञे। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ख़बरदार करे छॾियो। लाहौर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मोहसिन नक़वी चयो त लॉन्ग मार्च थियो त हाईकोर्ट जे फैसले ते रूह मूजिब अमल कयो वेंदो। हिन भेरे ईअं न थींदो त पीटीआई वारा अचनि ऐं मुल्क 10 या 20 ॾींहं बंदि थी वञे। हिन भेरे मुस्तक़िल हल कढियो वेंदो। अफ़ग़ानिस्तान सां लाॻापा दहशतगर्दनि खे रोकण ते मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे। हालतूं बरक़रार रहियूं त 1000 रूपये में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो। पीटीआई बानीअ जूं टेई भेनर लाहौर में नज़रबंद। अलीमा ख़ान खां पोइ उज़मा ऐं नूरी नियाज़ी खे बि नज़रबंद करे कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। डीसी लाहौर जो चवण आहे त पुलिस जी सिफारिश ते 3MPO तहत ॿिन्ही भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोट लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो आहे। गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा ख़ान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो।
3: नए सुबुह वाला मामला जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है और चाहे वो चैम्बर्स हैं, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे चैम्बर्स हैं, चाहे ट्रेडर्स हैं, चाहे किसान हैं, तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है। और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला, मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अल्लाह ताला ने चाह तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे। और इस बाद में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है, मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है।
0: वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी नवनि सूबनि वारी होड ते क़ाइम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसिन नक़वी जो चवण हो त नवनि सूबनि वारो मामिलो असांजी सोच खां वधीक तेज़ीअ सां अॻिते वधी रहियो आहे। अलाह चाहियो ऐं अवाम जी ख़्वाहिश हूंदी त नवां सूबा ज़रूर ठहंदा। सूबनि वारो मामिलो थधे या गरम खां घणो अॻिते आहे। नवनि सूबनि जो क़याम पाकिस्तान जी आहे। मुल्क में वध खां वध इंतज़ामी यूनिट ठाहिया वञनि। MQM जे कन्वीनर वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो त वफ़ाक़ी घरू वज़ीर बि चई रहियो आहे त नवनि सूबनि ते कम तेज़ीअ सां जारी आहे। सूबनि बाबति आइन वाज़े आहे, केरु ग़लति फहमीअ जो शिकार न रहे। फारूक सत्तार चयो त सिंध में 6 नवां इंतज़ामी यूनिट ठहण घुर्जनि। पहिरीं असां 1 गवर्नर घुरियो हो, हाणे असां 6 गवर्नर ॾींदासीं।

0: एम क्यू एम जी की आदत जेका बोली गालाए थी उहा कबूल करण जोगी नाहे। उर्दू गालाईंदड़नि जी अक्सरियत पाण खे सिंधी समझे थी। एम क्यू एम लसानी बुनियाद ते विरहाङे ऐं नफ़रत जी सियासत करे रही आहे। सिंध असेंबली नवनि सूबनि बाबति पंहिंजो फ़ैसिलो ठहराउ ज़रिए ॾेई ॿुधाए चुकी आहे। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमण एम क्यू एम अॻवाननि जे प्रेस कॉन्फ्रेंस ते रद्द अमल ॾींदे चयो त सिंध हुकूमत खे अतरादू कोठींदड़ एम क्यू एम वारा पहिरियां पंहिंजो मैंडेट साबित कनि। कराचीअ खे भताखोरी ऐं बोरी बंद लाशनि जी सियासत एम क्यू एम ॾिनी। हाणे फितने फसाद विगोड़न ऐं नवे वारे ॾहाके जी सियासत चाहिनि था। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ़्तिताह करे छॾियो। अॼु खां शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सेप्टेम्बर ताईं जारी रहंदी। 25 लख खां वधीक ॿारनि खे पोलियो खां बचाव जा फुड़ा पीआरिया वेंदा। इफ़्तिताही तकरीब खे ख़िताब कंदे मुराद अली शाह चयो त समूरी दुनिया जीअं पाकिस्तान मां बि पोलियो ख़तम कयो वेंदो, पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़नि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वेंदी। आलिम सगूरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाइ किरदार अदा कनि। पेट्रोलियम लेवी ख़िलाफ़ जमात इस्लामीअ जो कराचीअ खां निकतल ट्रेन मार्च सखर पहुची वियो। मुख़्तलिफ़ शहरनि मां गुज़रण दौरान ट्रेन मार्च जो शानदार आदर भाव। सखर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम जो चवण हो त मार्च जो पहिरियों मरहलो कामयाबी सां मुकमल कयो आहे। हुकुमराननि खे लेवी वापसि वठणी पवंदी। सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच सखर में घोटकी जी फहमींदा पिताफ़ी केस जी ॿुधणी। आई जी सिंध ऐं घरू सेक्रेटरी पेश न थिया। अदालत पुलिस खे नारीअ जी बाज़ियाबी लाइ 2 हफ़्तनि जी मोहलत ॾेई छॾी। ॿुधणी दौरान एडिशनल आईजी शर्जील खर, डीआईजी सखर नासिर आफ़्ताब पठाण, एसएसपी घोटकी अनवर खेतरान, एएसपी सखर सोहेब अहमद ऐं ॿिया पेश थिया। एडिशनल आईजी रिपोर्ट जमा कराईंदे चयो त नारीअ खे बाज़ियाब कराइण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। बासर सरदार खां कमेटी जोड़े कराची जे वापारी मीर रज़ा जे मुलाज़िम जा पुलिस ते संगीन इल्ज़ाम। कमीशन मीर रज़ा जे दोस्त, मुलाज़िम, बिज़नेस पार्टनर ऐं डीजी हेल्थ जा बयान कलमबंद करे वरिता। मीर रज़ा जो पहिरियों पोस्टमार्टम कंदड़ डॉक्टर उसामा पंहिंजी रिपोर्ट ते क़ाइम। डॉक्टर उसामा चयो आहे त मीर रज़ा खे गोली साम्हूं खां ई लॻल आहे। वकील जिब्रान नासिर चयो त डॉक्टर उसामा जो बयान गैर अहम आहे। कराची यूनिवर्सिटी जे प्रोफेसर आरिफ़ साकीअ ते तशद्दुद ऐं धमकियुनि वारो मामिलो हल थी वियो। जवाबदार कोनैन शाह ऐं प्रोफेसर आरिफ़ साकी विच में छाह। वकील जो चवणु आहे त कोनैन शाह जी ज़मानत वारी दरख़्वास्त ते प्रोफेसर आरिफ़ साकीअ पारां एनओसी जमा कराई वई। ॿिन्ही धुरियुनि पारां सुलहनामो बि जमा करायो वेंदो। कंदकोट भरिसां हथियारबंदनि जी फायरिंग, रिटायर्ड हेड कांस्टेबल ज़फ़र संजराणी क़तल। पुलिस मूजिब साल पहिरीं इंडस हाईवे ते मुक़ाबले में बंगवार बिरादरीअ जा 3 ॾोहारी मारिजी विया हुआ। पलांद में बंगवार बिरादरी जे हथियारबंदनि रिटायर्ड पुलिस अहलकार खे क़तल कयो। जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: खुशखबरी। हाणे अवां खे परेशान थियण जी का बि ज़रूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे, त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह। मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आई डी है हर छंछर का खमीस ताईं सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताईं। जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाइ राब्तो करियो 0306244770।
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6। सिंध जो आवाज़ ॿुधंदा रहो।

0: FM सकरंड GFM मटियारी GFM मातली जे गडियल आवाजन के साज ही आवाज जे इन साथ में शो जो नालो है सिंधड़ी जी शाम। अमा जो आरजे अमा सण मुखातिब है यूनिस बकारी। मोहब्बतुनि जी महफ़िल जारी हो सारी। सो मौज़ूदु ख़वातीन हज़रात, यकीनन असां हाणे जेको शो जो हिसो आहे उन में सेगमेंट हूंदो आहे लाइव कॉल्स जो, त नंबर नोट करे वठो जंहिं ते तव्हां कॉल कंदव ऐं कॉल फ़क़ति हिकु दफ़ो करणी आहे ऐं उन में अहिड़े नमूने ॻाल्हायूं जो पाण जी कचहरी बि सुठी थी वञे, सुठियूं ॻाल्हियूं बि थी वञनि। त पोइ नंबर नोट करियो 0334352578। जी हा, नंबर आहे 2024-35-2586। जी जनाब, हलंदासीं पहिरीं कॉल जी तरफ, ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलामु अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम यूनुस भाउ, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, ख़ैरु आहे?
0: अलहमदुलिल्लाह। केरु साहिब ऐं किथां खां? रामचंद, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो?
1: अलाह जा शुक्र लॻा, तव्हां ख़ुशि वेठा आहियो, तव्हांजी तबियत ठीकु आहे?
0: जी जी, अलहमदुलिल्लाह, अव्हांजी दुआ लॻी पई आहे। अव्हां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: दिलीप कुमार मेघवाल ॿुधे पियो, रहमान फ़क़ीर आमर जंहिंजी तव्हांखे दुआ सलाम चयो, चोवन कुमार कोली ॿुधे, ॿिए जेकी संगत ॿुधे पई, रामचंद कोली सलाम शाल क़बूल कयो।
0: वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू रामचंद, महिरबानी अव्हांजूं, लक थोरा तव्हांजा। जी जनाब, नोटे खां रामचंद जो ही आवाज़ तव्हां ॿुधो ऐं हाणे कॉल करण लाइ केरु हूंदो असां साण, सो ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे, इन जे करे नंबर ॾिसी वठो। हलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अलहमदुलिल्लाह। केरु साहिब भाई, किथां खां? जी रुस्तम अली पवार साहिब, ख़ुशि आहियो, ठीकु आहियो, चङा भला मतारा जोड़, अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, अलाह सां इहे अनेक अहसान आहिनि, तव्हांजो दुआऊं आहिनि। अव्हां सां गॾु बि केरु थो ॿुधे?
1: असांजो
0: आमीन सुम आमीन। अव्हां सां गॾु ही शो ॿियो केरु पियो ॿुधे?
1: हा, असांजा दोस्त पिया ॿुधनि, दिलीप कुमार मेंघवा, रामचंद मकवाणो, चोवन कुमार कोली, मोहम्मद आचर खासकेली, कुर्बान अली खासकेली, गुलाम रहीम बलोच, जेके बि दोस्त ॿुधनि पिया, सभिनी खे रुस्तम अली पवार जे तरफ़ां सिक भरिया संभाल सलाम।
0: वालेकुम असलाम, कुर्ब तव्हांजा कुर्ब, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, थैंक यू भलीकार। जी जनाब, असांखे हाफिज़ अब्दुल जब्बार सुमर ऐं हाफिज़ मोहम्मद हारून सुमरो पाटार बदीन खां ॿुधनि पिया भलीकार। चवंदासीं नंढिड़ो नफ़ीस खट्टी असांखे ॿुधे थो मियां पोटा तलहार खां, अव्हां जूं बि तमामु घणी महिरबानी, भलीकार। ऐं ॾिसंदासीं हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम भाउ, कहिड़ो हाल आहे?
0: भाउ दो आहे, केरु भाउ पियो ॻाल्हाए?
2: घोट बाबू वारो थरपारकर खां दिलीप कुमार मेघवाड़ ॻाल्हायां पियो।
0: जी दिलीप कुमार, अव्हां सां गॾु बि केरु पियो ॿुधे?
2: जी मूंसां गॾु नवल राज, दानिश कुमार, सूरज गुलशंकर लाल मेघवाड़, रोस्तम अली पवार, रामचंद मकवाणो ऐं मोहम्मद सिद्दीक पाण, मलक मोहन पलट, ॿिया जेके ॿुधनि पिया सभिनी खे।
0: अच्छा दिलीप कुमार, हिकिड़ो नंढो सवाल आहे, त तव्हांखे ॻाइण सुठो लॻंदो आहे या रोअण?
2: मूंखे ॻाइण सुठो लॻंदो आहे या रोअण, अक्सर तौर मूंखे वही कम दुखिया आहिनि,
0: मैं न खिली सघंदा आहियो, न ॻाल्हाए सघंदा आहियो, न ॻाए सघंदा आहियो, न रोई सघंदा आहियो, ईअं आहे छा?
2: खिलण सुठो लॻे थो, खिलण।
0: हा, पर माना हूअ जेकॾहिं रोअण ऐं ॻाइण मां का शइ तव्हांखे पसंदि करणी पए त
2: पोइ ॻाइण चवंदासीं, पर मसइलो इहो त ॻाए सघूं कोन था।
0: हा, इहो वॾो मसइलो, थैंक यू जे लाइ लख थोरा मिठो माण्हू,
2: थैंक
0: यू, थैंक यू, ख़ुशि हुजो। ओके जनाब, बिल्कुल आसानीअ सां तव्हां कॉल करे सघो था, 0334-35-786 असांजो नंबर आहे। कॉल ते असां सां गॾु केरु हूंदो उन जे लाइ ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे। हलो, अस्सलामु अलैकुम। जी केरु, छा हाल आहे, ख़ुशि आहियो?
1: अलहमदुल्ला, दुआऊं ॿाहिरि ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੁਧੂਗਾ 99.4 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ ਜੀ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਲੇ ਬੋਤਾ ਬੁਧੂ ਮਿਆ।
0: ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਆਵਾ ਸਕਦੇ ਵੀ चलो बे कैं गिला ना है करनी मुख्य यो बुधा तो शो मां में तहांजा दोस्त केड़ा केड़ा है सभी के वालेकुम सलाम भला कुर्बान हिकड़ी नंडी गाल पुछा
1: जी दा
0: गायण खिलण रोअण ये सब शयूं हर कंहिंखे थियूं अचनि भला इन्हनि मां का शइ तोखां पुछां त कहिड़ी शइ पंहिंजे पसंदि ते ॿुधाईंदे खिली ॿुधाईंदे रोई ॿुधाईंदे या गाए ॿुधाईंदे
1: जेको तूं पुछी
0: न तव्हां पंहिंजी चॉइस ते ॿुधाए छॾियो
1: असां रोई सघंदासीं खिली सघंदासीं गाए सघंदासीं जेको तोखे पसंदि
0: अचे तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी सां ॿुधायो
1: हा
0: ॿुधायो

0: उन्होंने जो सरदारों प्यारो
1: फिर
0: मिटवर कती कोयल मिटल आवाज प्यारो सैया ही मतलब
1: अदा बस रोआड़े छी आई तो मुझे माना जबरदस्त मुझे लगे पर आऊं वरी अलचो दिल माना भरजी आई है एडो सुठो मुझे लगायो थैंक यू
0: मेहरबानी
1: कुर्ब कुर्ब खुश हो जो आबाद हो जो जी मजे समय नंबर है 0334352578 6 यानी बुढ़ी 3 4 5 7 86 कॉल ते केर हुंदो उने जे लाए स्क्रीन में अखियो विछायल एंड सनासी कॉल ते केर आहे ओके जी कॉल अटेंड था कियो हेलो अस्सलाम वालेकुम साईं मीरानी साहब खुश आयो चंगा भला मतारा जोड़
0: अलहमदुल्ला शुक्र मौसम मटी गया मजो लोकर में लतीफ़ा
1: वाह वाह जबरदस्त मीरानी साहब जगह हाँ मौसम चेंज पी थिए तब्दील पी थिए इन तब्दीली जेका मौसम जी आहे इहा हूअं बि चवंदा आहिनि न मौसम ऐं माण्हू जॾहिं मटिबा आहिनि त तकलीफ़ थींदी आहे तव्हांखे छा महसूस थींदो आहे जी मुझे चवणे मकसद है मौसम मटबी है न तदे मानू के जुकाम बुखार खंग थी पवंदी आ ऐ मानू मटबैन तब दिल दुखी पवंदी आ तवा छा था चो इन हवाले सा
0: तनी जे पार के में जा मा थोरो जल्दो ले तो लौडा
1: अच्छा इन जे करे
0: हमरा के नई वो सवाल ले मा थे बुझाया
1: चलो एकडो कम कयो भला तवा पे दोस्तन ने नाला खणी वठो जेके दोस्ता ना बुधन था वालेकुम असलम वालेकुम असलम थैंक यू सर थैंक यू मेहरबानी ओके जनाब आवाज़ साथ में कंदासी हाल अहवाल नंबर असो 0334352578 6 कॉल अची रही है दिसंदी कॉल कैंजी है कॉल के बुधी था वो हलो असलम अलैकुम बल्कि कोशिश क्यों कॉल अटेंड कर वो हलो असलम अलैकुम हलो असलम अलैकुम शायद आवाज कौन पे अचे आवाज अचे पे वालेकुम असलम केर साहब है किथा का मोहब्बती मंगणे निजामाणी साहब खुश आयो चंगा भला मतारा जोड़ अलहमदुल्ला अवां जी दुआ लगी पई है अवां सा गड नडड़ो एहसान बुधन हुंदो साईं महिरबानी साईं शायर हाफिज़ मोहम्मद रिज़ामाणी असांजी धरती जो तमामु वॾो शायर आहे जेकॾहिं उहो ॿुधे पियो त असांजा भाग भला आहिनि ऐं लख थोरा तव्हांजा मोहब्बती मंगण साहब तव्हां सोहराब निज़ामाणी जो तारीख़ी ॻोठु आहे कड़ियो गंवर जे वेझो तव्हां ॿुधो पिया किरोड़े कुर्ब तव्हांजा भला सोहराब निज़ामाणी जे ॻोठ जा भाउ मोहब्बती मंगण अवां ख़ुदि झूंगारींदा आहियो गाए ॿुधाईंदा आहियो गर्मी लॻी आहे किथे गाए सघंदासीं इहा ॻाल्हि सची ठीकु आहे भला दोस्तनि खे यादि करियो था अच्छा तमामु घणी महिरबानी मिठा माण्हू तमामु घणी महिरबानी तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम जो इंतज़ार था करियो बसि ॿियो छा घुर्जे असांजा सभई प्रोग्राम तव्हां जे नाओ बसि हा चलो चलो थैंक यू वेरी मच लख थोरा तव्हांजा मोहबती मंगण शायदि सिग्नल घटि हुजण जे करे कॉल कटिजी वई पर ख़ैर तव्हांजी ॻाल्हि ॿोल असां ॿुधी वरिती आहे ऐं हाणे ॾिसंदासीं त असां सां गॾु कॉल ते केरु आहे हैलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलाम केर साहब ऐं किथां खां जी चांडिया साहब छा हाल आहे ख़ुशि आहियो अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हां सां कॾहिं ॿियो केरु पियो ॿुधे अच्छा अच्छा सभिनी खे भलीकार साईं भलीकार महिरबानी महिरबानी लख थोरा जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ साथ में असां कॉल जो इंतज़ार कंदे कंदे हिकिड़ी कॉल अटेंड था करे वठंदासीं। ॾिसंदासीं कॉल ते केरु आहे, बल्कि कॉल ड्रॉप थी चुकी आहे। 2334 5025786 जे नंबर ते अव्हां जी कॉल पोइ हाणे कॉल कंहिंजी आहे। हलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, केरु साहिब ऐं किथां खां?
0: लार खान ॻाल्हायां पियो।
1: ज़ोहिब ख़ान साहिब, भली कार चवंदासीं तव्हांखे। वालेकुम सलाम ऐं महिरबानी असांजी सॼी टीम खे दुआऊं ऐं सलाम ॾियण जे लाइ। अवां सां गॾु ॿियो केरु पियो ॿुधे? ज़ोहिब, मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो? मुंहिंजो आवाज़ अचे पियो ज़ोहिब तव्हां ताईं?
0: जी, ज़बरदस्त आवाज़ अचे पियो। सही तव्हां साफ़ सफ़ा।
1: हा, अच्छा ज़ोहिब, तव्हां सां गॾु ॿियो केरु थो ॿुधे हीउ प्रोग्राम?
0: साईं, मुंहिंजो रहमान ज़ैनुल आबदीन, मुंहिंजो भाउ शुएब कटबर, बिलावल कटबर ऐं आसिफ चाचर।
1: अच्छा, तमामु घणी मोहबत।
0: सिंधी गानो त ॿुधाए सुठो अॼु असांखे,
1: पर अॼु ज़ोहिब जेके चवां तव्हां मूंखे ॻाए ॿुधायो त ॿुधाईंदा?
0: साईं बिल्कुलु ॿुधाईंदासीं, पर तव्हां असांजी फरमाइश पूरी कोन।
1: सर, असल में कालोन जे विच में बैकग्राउंड में गाना हलंदा आहिनि, फुल गानो खे नथा नशर करे सघूं। बाकी ईअं आहे त जॾहिं सुभाणे वारो प्रोग्राम हूंदो त पहिरें कलाक में तव्हां मैसेज कंदो त उहो कलाम ज़रूर हलंदो। न न, को मसलो कोन्हे। गीत खारा न चओ, गीत खारा न चओ, ज़मानो चवे त वञी चवे, तूं त प्यारा न चओ। हा, ॿुधाए ॿुधाए।

महिरबानी लख थोरा तव्हांजा ख़ुशि हुजो आबाद हुजो। ही आहे GFM 88 रेडियो नेटवर्क, तव्हां ॿुधो पिया GFM लाड़काणू, GFM सखर, GFM मेरापुर, GFM सकरंड, GFM मेरप्रखास ऐं GFM मातली। शो जो नालो आहे जी हा जनाब सिंधड़ी जी शाम। आर जे आई यूनिस बकारी मोहब्बतूं अव्हां जे नाम करे वठूं ॾिसूं था। हलो जी, केर साहब अलहमदुल्ला, अल्लाह पाक जा किरोड़े करम आहिनि ॿुधायूं। अव्हां सां गॾु ॿियो केर थो ॿुधे? हा उहो ईअं असल में नंबर ते रश आहे, इहो अहिड़ो वीचारो नंबर आहे।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया दा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जा बकतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।
4: This program is brought to you by
5: Bank Islam ने लाया पाकिस्तान का पहला शरिया कंप्लायंट गोल्ड बेस्ड फाइनेंसिंग।
6: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: थैंक यू थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया।
1: ओके जनाब, थैंक यू
0: थैंक यू थैंक यू। जी जनाब, 03-4-3-5-2-5-7-8-6 ते कॉल करियो, शामिल थी वञो असगंज दिसनाजी कॉल ते केर आहे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, केर पे गलहाइन?
2: ठीक कर जे वाला बाबर चांडो नंबर
0: है जी। बाबर चांडो साहब, अमा से केर बे केर
2: बस मुजा दोस्तन दुकार चांडो साजिद चांडो मंताज चांडो जाकिर चांडो।
0: थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच भलीकार। अवसर साथ है जी एफ एम 88 रेडियो नेटवर्क जो कॉल ते केर है वो दिसू ता हाने हाने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग यूनुस साहब, आई ख्याल खुश आयो।
0: मेहरबानी हो मेहरबानी। लखथोरा केर साहब है, किथा का?
3: कुनरी जी नगरी में चौहान कुमार कोली अद पे गया यूनुस साहब।
0: छा हाला चौहान कुमार कोली साहब, अवा सके भी केर पे बुधे
3: दोस्त कुंदरी वाला असा हूं कासम लछवाणी मुसा गड हुंदो आ बुदूं पे इंजॉय करियो पे आवा के एकरो सा दोस्त सेवन साइड में वरी रुस्तम बुदंदो आ तमाम प्यारो दोस्त है एकरो मिट्टी जी गद्दी भिट जे पासे में गुलाब गुल भी आवा के बुदे पे रामचंद मकोन नोटे जी नगरी में बुदे सबनी के मुजा सलाम करो।
0: किरोडी कुर्ब मिठा मानू किरोडी कुर्ब लख थोरा ताजा
3: मेहरबानी सर।
0: खुश हो जी जनाब, साज आवाज साथ में अवा सा गड हुंदो साथ ठीक 7 बजे। वाल्टर सिन्हासी कह रहा है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
4: तमाम आमिर
0: फकीर आमिर झिंझी साहब नोटो का असके बुधंदो है लख थोरा साई
4: साई तवाजो मिठड़ो प्यारो आवाज तवाजे बिल्कुल प्यार मोहब्बत में बुधू पाडो असके तमाम प्यारो आवाज तवाजो लगे भेजो क्या तारीफ करियो।
0: मेहरबानी, तारीफ बस दुआओं उनमें याद रखो, तारीफ की जरूरत को बस
4: मिठे मोहब्बत माड़ू की तारीफ कजे बस
0: बस न कयो तारीफ तार को दुआन में याद करे यो मुझे ला वडी गाल है। फकीर आमिर जिंजी साहब अवा सा के भी केर पे बुधे
4: साईं मजा दोस्त न रामचंद कुमार मकवाणो है मामा सिद्दीक पाड़ो है भाई तो अख्तर अहमद जिंजी है असो दोस्त बेवफा दोस्त चौबन कुमार कोली साहब जो कुंडरी शहर में तुम्हें बुधे पो
0: हाँ
4: वेलकम है वरीशाल चवंदी आखिर में मौला भी दुख नो
0: आमीन सुम आमीन। किरोड़े कुर्ब मिठा मानू किरोड़े कुर्ब जी जनाब, साज आवाज साथ में अवा सा साथ जुड़ियल है सो अवा उन साथ सा साथ निभाई तो वाह वाह वी तो अज अस केर साथ निभाई केर साथ री 03-4-3-5-2-5-7-8-6 केर हों गड। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला, दुआओं लगी पे खुश आयो केर साहब पे गलो साई जी जी साईं
4: तमाम प्रोग्राम लगे थे
0: जी जी साईं मेहरबानी नाज साहब भी अवां सां केर पे बुधे
4: असांजा गॾु रोशन अली पावर रोशन अली पावर चौहान कुमार कोली गुलाम रहीम गलोच ऐं ॿिया जेके दोस्त ॿुधंदा उन सभिनी खे ज़ोरदार सां सलाम।
0: वालेकुम असलम, किरोड़े कुर्ब मिठा मानू झोल खां असांखे नाज़ फकीर मोहम्मद जलालाणी साहब जॉइन कयो इस्नासी हाणे कॉल ते केरु। हलो, अस्सलाम वालेकुम। हलो, अस्सलाम वालेकुम।

0: समस्याओं से टकरा के ये आवाज मेरी आपके समाज होता है। क्या है खैर,
1: मैं सदके जाऊं आसिम, बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया और आप शो सुन रहे हैं, वेलकम कहते हैं आपको जनाब।
0: सर थैंक यू सो मच। अब बिल्कुल आपका शो सुन रहे हैं और दोनों कानों से और दोनों कान लगा के बैठे हुए हैं आपके शो में।
1: देखिए ये आपकी मोहब्बत है ना, जब आप सुनते हैं, हमारे दोस्त सुनते हैं, जो अपने सुनते हैं, जो समझते हैं, उन सबका शुक्रिया और स्पेशली आपका कि आपने पहली बार शो में शिरकत की है।
0: सर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, और रही बात तो दूसरी की, आपकी आवाज और आपकी मिठास और आपके ये जो अल्फाजों की मोहब्बत की हमारे ऊपर छांव होती है ना, यकीन करें कॉल की कि आज प्रोग्राम में लाजमी शामिल होना।
1: सही, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप शामिल हो गए हैं और ये एहसान मोहब्बत और ये हमेशा जारी।
0: थैंक यू, और इंशाल्लाह जब तक ये तो मैं दौड़ रहा हूँ।

0: और ये सांसें चल रही हैं तो ये बरकरार रहेगी मोहब्बत। हम आते हैं जहाँ जहाँ सुन
1: बहुत शुक्रिया देशनवासी हाँ असर कॉल ते केर आहे। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम मिठा मानू
1: साईं केर साहब हैं किथा का
2: साईं रंजन कोरी कोरी गोठ मीरपुर खास
1: का। छा हाल रंजन साईं खुश आयो ठीक आयो?
2: अल्लाह पाक जो शुक्र है साईं तमानी दुआओं।
1: हाँ मौसम की है तान
2: कई मौसम तो माशाल्लाह गरम थी हुआ।
1: अच्छा मजो थी हुआ मौसम जो
2: मौसम गरम है ॾींहं में टे टे चार चार दफ़ा विझूंदा पहिरीं ॿ दफ़ा विझंदासीं हाणे चार दफ़ा पंज दफ़ा।
1: सुठी ॻाल्हि आहे सिहत जे लाइ ज़रूरी आहे न त मौसम गरम हिन ही आहे साहेड़ियुनि जे पचण जी मौसम त फसल जे लिहाज़ खां कुदरती निज़ाम आहे गर्मी आहे छो त मथां सर्दी बि अचणी आहे वरी जेकॾहिं तव्हां चार चार दफ़ा विझंदो त सिहत याब रहंदव न।
2: जी जी तव्हांजी तबियत कीअं आहे तव्हां ॿुधाइजो।
1: अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला तव्हांजी दुआ आहे बिल्कुलु ख़ुशबाश ऐं हशाश बशाश लॻो पियो आहियां।
2: तव्हां लाइ जुमियारे ॾींहुं गॾिजी दुआ कराई जमायत पाए ॾिनी
1: साईं मां थोराए थो आहियां तव्हांजे दुआऊं त जीअण सेखारियो आहे।
2: जी जी
1: कुर्ब साईं साईं मुंहिंजूं दुआऊं तव्हां सां गॾु आहिनि लख थोरा तव्हां सां तव्हां असां सां गॾु आहियो तव्हां सां गॾु
2: नोटे जी नगरी में ॿुधो सभिनी खे मुंहिंजा सलाम
1: किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू किरोड़े कुर्ब लख थोरा तव्हांजा ख़ुशि हुजो। जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ साथ में अवां सां गॾु हूंदो साथ ठीकु सते वजे वालदेसी केरु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। फ़क़ीर आमिर झिंझी साहब नोटो खां असांखे ॿुधंदो आहे लख थोरा साईं
3: साईं तव्हांजो मिठड़ो प्यारो आवाज़ तव्हांजे बिल्कुलु प्यार मोहबत में ॿुधूं पिया ऐं एॾो एॾो असांखे तमामु प्यारो आवाज़ तव्हांजो लॻे पियो छा तारीफ़ करियूं।
1: महिरबानी तारीफ़ बसि दुआऊं हुन में यादि रखो तारीफ़ जी ज़रूरत कोन्हे बसि
3: मिठे मोहबती माण्हू जी तारीफ़ कजे
1: बसि न कयो तारीफ़ तव्हां रुगो दुआनि में यादि करियो इहो मुंहिंजे लाइ वॾी ॻाल्हि आहे। फ़क़ीर आमिर झिंझी साहब अवां सां कॾहिं केरु पियो ॿुधे
3: साईं मुंहिंजा दोस्त न रामचंद कुमार मकवाणो आहे मोहम्मद सिद्दीक पारो आहे ऐं मुंहिंजो नंढो भाइटो अख़्तर अहमद झिंझी आहे ऐं असांजो दोस्त बेवफ़ा दोस्त चोबन कुमार कुली साहब जेको कुंडली शहर में तव्हांखे ॿुधे पियो उनखे वेलकम ऐं परेशान चवंदासीं ऐं तव्हांजे लाइ आख़िर में इहो त मौला रबिल आलमीन करे कॾहिं बि ॾुखियो ॾींहुं न ॾिसो।
1: आमीन सुम आमीन किरोड़े कुर्ब मिठा माण्हू किरोड़े कुर्ब। जी जनाब साज़ ऐं आवाज़ साथ में अवां सां साथ जुड़ियल आहे सो अवां हुन साथ सां साथ निभाईंदो त वाहवा थी वेंदी त पोइ अॼु असां सां गॾु केरु साथ निभाईंदो केरु साथ ॾींदो 0334352578 ते असांखे कयो कॉल ऐं ॾिसंदासीं केरु हूंदो असां सां गॾु। हलो अस्सलाम वालेकुम। हलो अस्सलाम वालेकुम। अलहमदुल्ला अलहमदुल्ला दुआऊं लॻी पियूं आहिनि ख़ुशि आहियो केरु साहिब पिया ॻाल्हायो साईं
4: तव्हांखे ॿुधूं पिया तव्हांजे प्रोग्राम खे ॿुधूं पिया
1: जी जी साईं

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए
3: बहादुर पुटन मुल्की दिफा ला जानन जा नजराना पेश किया फौज ए पुलिस जे जवानन बहादुरी से दहशतगर्दन खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सो वरतो सभी के गर्जी दहशतगर्दी जो नासूर खत्म करण पवंदो दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे ताई सुख से न वेहंदासी कोहाट में मीडिया से गालंदे अताताड़ चयो तो पीटीआई की सूबाई हुकूमत रुगो सोशल मीडिया ते पोस्टू रखण जाने थी यो तय आहे त इस्लामाबाद तरफ कंखे भी अचन न डनो वेंदो सोहेल आफरीदी कुछ नथो करे सके त घर हलो वे बिन ढीन के दौरे से तेहरान पौतल फाकी घरू वजीर मोहसन नकवी की इस्कंदर मोमनी से मुलाकात वे तरफन लागापन समेत खिते की मौजूदा सूरत हाल के ख्याल की डे वट मोहसन नकवी ईरान के बी क्यादत से भी मुलाकातू कद जरिये मूजिब मोहसन नकवी के दौरे दौरान अमरीका ईरान गाल बहाली से भी गौर किया वो ईरान के तबाह करण है मैशत सख्त मुतासर करनी है या कें मुआदे ती पहुंचण है मामले से जल्द वो फैसलो करण वो आया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान बाबत टे ऑप्शन बुधा छ्या अमरीकी टीवी के डिनल इंटरव्यू में सदर डोनाल्ड ट्रंप तो ईरान जंग बाबत फैसलायती मरहले से पहुंची वो आया इंदर डीन में विच ओभर में वड्यू तब्दीलियों भी ऐसण लाय मिली सन गडल कौमन के इजलास दौरान ईरानी सदर मसूद पशकियान से मुलाकात भी थी सके थी अमरीका नओ हमलो कयो तो जवाब पहरी का वधीक खतरनाक हथियार से डनो वेंदो ईरानी फौज खबरदार कर छो पास्तारान इनकलाब के तर्जमान हुसैन मोहबी है तो अमरीका नओ हमलो कयो तो ईरान भी नवा हथियार इस्तेमाल कंदो अमरीकी अड्डन से गड अड़न हंधन के भी निशानो बणाईदी जिनके अजा ताई निशानो ना बणाय वो
4: जितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है वो मेरा ख्याल है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते और जिस तरह प्रैक्टिकली पब्लिक साथ आ रही है और चाहे वो चैम्बर्स हैं चाहे वो ट्रेडर्स हैं चाहे चैम्बर्स हैं चाहे ट्रेडर्स हैं चाहे किसान हैं तकरीबन हर बंदा किसी न किसी तरीके से अपना रोल प्ले कर रहा है और आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला मैं तो बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अल्लाह ताला ने चाह तो ये इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूं कि अगर अल्लाह ताला ने चाह और अगर पब्लिक की मर्जी हुई तो सूबे जरूर बनेंगे और इस बात में कि सूबों वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है मेरा ख्याल है बहुत तेजी से चल रही है
3: वफाकी घरू वजीर मोहसन नकवी नवन सूबन वाली होल से कायम लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मोहसन नकवी चयो तो नवन सूबन वो मामलो असांजी सोच का वधीक तेजी से अगते वधी रो है अल्लाह चाहो अवाम की ख्वाहिश हूंदी तो नवा सूबा जरूर ठहंदा सूबन वो मामलो थदे या गर्म का घणो अगते है नवन सूबन जो क्याम पाकिस्तान की आइनी जरूरत है मुल्क में वध का वध इंतजामी यूनिट ठाया वन एमक्यूएम के कन्वेनर खालिद मकबूल सिद्दीकी है तो वफाकी घरू वजीर भी चई रो है तो नवन सूबन से कम तेजी से जारी है सूबन बाबत आइन वाजे है केर गलत फहमी जो शिकार न रहे फारूक सत्तार तो सिंध में छह इंतजामी यूनिट ठहण घुर्जन पे असा एक गवर्नर घुरो हाँ असा जहा छह गवर्नर थन्दा

0: क्यूएम जी की आदत जेका बोली गालाए थी वह कबूल करण जोगी ना है। उर्दू गालाइंदड़न जी अक्सरियत पाण के सिंधी समझे थी। एमक्यूएम लसानी बुनियाद ते विरहांगे ए नफरत जी सियासत करे रही है। सिंध असेंबली नवन सूबन बाबत पैंजो फैसलो ठहराव जरिए दई चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमण एमक्यूएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस से रद अमल डींदे सिंध हुकूमत के एतराजू कोठींदड़ एमक्यूएम वारा पैरा पैंजो मैंडेट साबित कन। कराची के भत्ताखोरी ए बोरीबंद लाशन की सियासत एमक्यूएम डिनी। हाने फितने फसाद विगोड़न ए नवे वाले दहाके की सियासत चाहन था। सिंध के वे वजीर सैयद मुराद अली शाह सिंध में पोलियो मुहिम जो इफ्तिताह करे छो। अज का शुरू थियल पोलियो मुहिम 27 सेप्टेम्बर तक जारी रही। 25 लख का वधिक बारन के पोलियो का बचाव जा फुड़ा पियारा वेंदा। इफ्तिताही तकरीब का खिताब कन्दे वे वजीर चयो तो समूरी दुनिया जिया पाकिस्तान मां भी पोलियो खत्म कयो वेंदो। पोलियो मुहिम में कोताही कंदड़न खिलाफ सख्त कार्रवाई कई वेंदी। आलिम सगोरा पोलियो मुहिम कामयाब करण लाए किरदार अदा कन। पेट्रोलियम लेवी खिलाफ जमात इस्लामी जो कराची का निकतर ट्रेन रोहड़ी का इस्लामाबाद तरफ रवानो। मुख्तलिफ शहर में गुजरण दौरान ट्रेन मार्च जो शानदार आदर भाव। सखर में मीडिया से गालाइंदे हाफिज नईम चयो तो मार्च जो पेरो मरहलो कामयाबी से मुकम्मल कयो आहे। हुकुमरानन के लेवी वापस वठनी पवंदी। सिंध हाईकोर्ट सर्किट बेंच सखर में घोटकी की फमीना पिताफी केस की बुधनी। आईजी सिंध ए घरू सेक्रेटरी अदालत में पेश न थिया। अदालत पुलिस के नारे की बाजियाबी लाए वधीक बिन हफ्तन की मोहलत दई छी। बुधनी दौरान एडिशनल आईजी शर्जील खरल डीआईजी सखर नासिर आफ्ताब पठान एसएसपी घोटकी अनवर खेतरान एएसपी सखर सुहेब अहमद ए बया पेश थे। एडिशनल आईजी रिपोर्ट जमा कराईदे तो नारिय के बाजियाब करण लाए कोशिशू जारी आन। बासर सरदार खां भी कमेटी जोड़े पुछा गाछा कई भी है। कराची के व्यापारी मीर रजा के मुलाजिम जा पुलिस से संगीन इल्जाम। कमीशन मीर रजा के दोस्त मुलाजिम बिजनेस पार्टनर ए डीजी हेल्थ जा बयान कलमबंद करे वरता। मीर रजा जो पेरो पोस्टमार्टम कंदर डॉक्टर ओसामा पांजी रिपोर्ट ते अज भी कायम। डॉक्टर ओसामा चयो तो मीर रजा के गोली सामू खां ही लगल है। वकील जिब्रान नासिर चयो तो डॉक्टर ओसामा जो बयान गैर अहम है। संदस गालन से फर्क न पवंदो। मीर रजा की मंगेंदी जो मोबाइल भी पुलिस वट गैर महफूज है।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
3: खुशखबरी हाने अवा के परेशान थे का भी जरूरत न आ। जेकर तवा कें भी बीमारी में मुब्तला आयो या बीमारी पुरानी थी वही आहे तो उन बीमारी जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतरा ही मरीज सेहतियाब थी चुका आहिन। अवां बे एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद आहे। क्लिनिक जो टाइम आईडी है हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, एमसीबी बैंक जे सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात जे लाए राब्तो करियो 0306244770।
4: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
5: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
4: जीए एफएम नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: डॉक्टर तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
3: जीए FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: दुनिया के ज्यादातर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ दो मुल्क रहते हैं जहां ये वायरस अभी तक बच्चों का महफूज मुस्तकबिल छीन रहा है, और बदकिस्मती से हमारा मुल्क भी इन दो ममालिक में शामिल है। अब जिम्मेदारी हम सब की है, हर मुहिम के दौरान अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के दो कतरे लाजमी पिलवाएं। पोलियो मतलब मुस्तकिल माजूरी।
1: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इन्हन कदमन के रोके भी सके थो। इन्हीं करे जड़े भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इन्हन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था। पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी।

0: हक सच जो आवाज संगीत जो आवाज जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज
1: जी FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज,
4: ब्रॉट टू यू बाय
5: सोना यूरिया ग्रेनुलर, मिट्टी जो मान वधाए।
6: कन्वेनर खालिद मकबूर सिद्दीकी, फारूक सत्तार ए बेन सा गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो तो नवन सूबन जो क्याम पाकिस्तान की आइनी जरूरत है। मुल्क में वध का वध इंतजामी यूनिट ठाया वन। वफाकी घरू वजीर पे चई रो है तो नवन सूबन ते कम तेजी से जारी है। सूबन बाबत आइन वाजे है, केर गलत फहमी जो शिकार न रहे। एमक्यूएम की क्यादत जका बोली गालाए थी वह कबूल करण जोगी ना है। उर्दू गालाइंदड़न की अक्सरियत पान के सिंधी समझे थी। एमक्यूएम लसानी बुनियाद ते विरांगे ए नफरत की सियासत कर रही है। सिंध असेंबली नवन सूबत बाबत पैंजो फैसलो ठहराव जरिए दई चुकी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमण एमक्यूएम अगवाण की प्रेस कॉन्फ्रेंस से रद्द अमल डींदे चयो तो सिंध हुकूमत के अतरादो को थींदड़ एमक्यूएम वारा पहिरां पैंजो मैंडेट साबित कन। कराची के भत्ताखोरी ए बोरी बंद लाशन की सियासत एमक्यूएम डिनी। हाने फितने फसाद विगोड़न ए नवे वरे दहाके की सियासत चाहन था।
3: आप सुन रहे थे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए FM 91.6।
8: खुशखबरी हाणे अवां के परेशान थियण जी का भी जरूरत न आहे। जेकॾहिं तव्हां कंहिं बि बीमारी में मुब्तला आहियो या बीमारी पुराणी थी वई आहे त उन बीमारीअ जो इलाज हैदराबाद शहर में सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक ते कयो वेंदो आहे। सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक हैदराबाद में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अली खान, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी ऑफ पाकिस्तान, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन, सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ए हस्पताल नवाबशाह, मरीजन जो चेकअप ए इलाज होम्योपैथिक तरीके से कंदा आहिन। अल्हम्दुलिल्लाह केतराई मरीज सेहतयाब थी चुका आहिन। अवां बि एक दफो आजमाए दिसो। चेकअप फीस सिर्फ 300 रुपया। क्लिनिक में मेडिकल स्टोर की सहूलत पिण मौजूद है। क्लिनिक जो टाइम ए डीह हर छंछर का खमीस ताई सुबुह जो 10 वगे का शाम 5 वगे ताई जुमो मोकल आहे। एड्रेस सिंध होम्योपैथिक क्लिनिक, बदीन स्टॉप रोड, पुरानी सब्जी मंडी, MCB बैंक के सामू, नया पुल, हैदराबाद। वधिक मालूमात के लिए राब्तो करियो 0306244770।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिते की बनी है आवाज।
1: GA FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए एफएम नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

GAFM नेटवर्क ऐं प्रोग्राम दिल जी ॻाल्हि जे ॿुधंदड़नि सभिनी मायनातनि महबूबनि दिलरुबा दोस्तनि पिनी प्यारनि खे वेलकम भलीकार ख़ुशामदीद। सूर हा साह में पोए बे सुरकान हा, सूर हा साह में पोए बे सुरकान हा, माठ हुई मन अंदर पार ऐं पिटकान हा। सूर हा साह में पोए बे सुरकान हा, माठ हुई मन अंदर पार ऐं पिटका नहा, दर्द गोढ़ा अखियुनि में बणिया शाहिदी, दर्द गोढ़ा अखियुनि में बणिया शाहिदी, प्यार में तो ॾिना छा ही तोहफ़ा नहा। रात भर साह में आहे चुभंदी रही, रात भर साह में आहे चुभंदी रही, सार तुंहिंजी हुई लोह कोका नहा, रूह मुंहिंजी उठी रात तोखे सॾियो, रूह मुंहिंजी उठी रात तोखे सॾियो, शेर मुंहिंजा मगर तोॾे पहुता नहा। शांत जज़्बा करे सर्द सारा छॾिया, शांत जज़्बा करे सर्द सारा छॾिया, नेण साॻिया हुआ तन में उल्का नहा, वक़्त जा पेर ऐं पंध साॻियो मगर, वक़्त जा पेर ऐं पंध साॻियो मगर, जुस्तजू जीअ सां हेल खुटका नहा, वक़्त केॾो मटाए छॾियो अथई मिठा, वक़्त केॾो मटाए छॾियो अथई मिठा, शाहिदा लै तो वटि छो दड़का नहा, सूर सारा हा साह में पोए बि सुॾका नहा, माठ हुई मन अंदर पार पिटका नहा।

वरी समुंड तां अॼु उञारा वञूं पिया, वरी समुंड तां अॼु उञारा वञूं पिया, अव्हां जी बज़म मां डुखारा वञूं पिया। वरी समुंड तां अॼु उञारा वञूं पिया, अव्हां जी बज़म मां डुखारा वञूं पिया, वरी कोन वरबो अव्हां ॾांहुं वापस, वरी कोन वरबो अव्हां ॾांहुं वापस, अखियुनि में समायूं सितारा वञूं पिया। अव्हां बेरुखीअ जी न सौगात सौंपियो, करे माठ मुर्की खुदारा वञूं पिया। जीअण पोए कहिड़ो असांजो दुनिया में, जीअण पोए कहिड़ो असांजो दुनिया में, कयो कुर्ब में था किनारा वञूं पिया। अजल जो सने हो पुनो पाण ताईं, अजल जो सने हो पुनो पाण ताईं, हुआ साह बुत खे उधारा वञूं पिया। करे याद को या विसारे असांखे, करे याद को या विसारे असांखे, छॾे शाहिदा सब सहारा वञूं पिया, वरी समुंड तां अॼु उञारा वञूं पिया, अव्हां जी बज़म मां डुखारा वञूं पिया।

दोस्तों वक्त थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वापसि वरंदासीं ऐं अवां सां खुड़ सारियूं दिलि जूं ॻाल्हियूं कंदासीं, अवां जूं फोन कॉल्स बि अटेंड कंदासीं। हींअर ब्रेक खां पोइ वरी वरंदासीं, ॿुधंदा रहो GAFM नेटवर्क।

0: It's 9:30 PM. This time check is brought to you by.
1: अगर खूबसूरती चाहिए तो आर्श अपनाए. आर्श ब्यूटी क्रीम, एलोवेरा और एवोकाडो सिर्फ 3 दिनों में डार्क स्पॉट, एक्ने एंड स्कार्स रिड्यूस करके स्किन को बनाए रेडियंट स्पॉट.
2: हर बार जा नंढड़ा कदम एक नई दुनिया डा वधन था, पर पोलियो इनन कदमन के रोके भी सके थो. इन्हीं करे जडहें भी पोलियो मुहिम दौरान पोलियो वर्करन जी दस्तक थे त दर खोलियो ए पेंजे बारन के पोलियो खां बचाओ जब कतरा जरूर प्यारियो, छो त ये कतरा बारन में मुदाफती ताकत के वधाइन था ए इनन जे ख्वाबन के उड़ाम देन था. पोलियो मतलब जिंदगी भर जी माजूरी.
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो. पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां. हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट, हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं. बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु. वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
4: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़. उधर
5: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
6: उसी खित्ते की बनी है आवाज.
5: जीए FM नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज.

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

और दोस्तों वक्त थियो आहे हिकड़ी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो, ब्रेक खां पोइ वापस वरी वरंदासीं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। अवां जूं कॉल्स शामिल थींदियूं प्रोग्राम में, ॿुधंदा रहो GFM नेटवर्क।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज,
1: जीए FM नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
1: जीए FM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: ब्रॉट टू यू बाय
2: सोना यूरिया ग्रेनुलर मिट्टी जो मान वधाए।
3: अफगानिस्तान सां लागापा दहशतगर्दनि खे रोकण ते मामूल ते न ईंदा। आलमी मार्केट जे हिसाब सां तेल महांगो थींदो आहे। हालतूं बरकरार रहियूं त 1000 रूपये में बि लीटर पेट्रोल न मिलंदो।

0: जूं टे भेनर लाहौर में नजरबंद अलीमा खान खां पोए उज़्मा ऐं नूरी नियाज़ी के भी नजरबंद करे कोच लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। डीसी लाहौर जो चवण आहे त पुलिस जी सिफारिश ते 3 MPO तहत बिन्ही भेनरुनि खे 30 ॾींहनि लाइ कोच लखपत जेल मुंतकिल कयो वियो। गुज़िरियल ॾींहुं अलीमा खान खे बि नज़रबंद कयो वियो हो।
1: इंशाल्लाह बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा और अगर तकलीफ की मर्जी हुई तो सुबह जरूर बनेंगे और इस बार में कि सुबह वाली जो तहरीक है वो ठंडी है या गर्म है मेरा किसी कहते दुनिया में पेट्रोल की कीमत कहाँ जा रही है पता है, उनको में पेट्रोल नहीं मिल रहा। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, 1000 रुपए का भी लीटर पेट्रोल नहीं मिलेगा बिकॉज जिस तरह दुनिया की सिचुएशन है, कल या परसों भी हमने जिस मुश्किल से अपनी शिफ्ट निकलवाई है, दास साहब उसमें मौजूद थे, हमारे बाकी लोग मौजूद थे, एक एक शिफ्ट के पीछे हर बंदा जान मार।
0: वफाकी घरू वजीर मोहसिन नकवी नवन सूबनि वरी होॾ ते चयो त सो तेज़ी आहे, अलाह चाहियो
2: सूबों की बात कर रहा है, सूबों को टुकड़े करने की बात कर रहा है और हुकूमत खामोश, हुकूमत के सामने जमात खामोश, उसका एक फर्द बोल रहा है, वो होता था मुल्क के अंदर उसकी हैसियत क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो जिसके घर का नौकर है उसके घर की अपनी नौकरी करे, उसके बर्तन धोए, कपड़े धोए उनके, यही उनकी ड्यूटी है। मुल्क के मसायल से इसका कोई तरफा इसकी जो बस हम भी नहीं है, जब मुल्क के साथ खेलते रहे और हम तमाशा देखते रहे।
0: हुकूमत जो हिकु हिसो सूबनि खे टुकड़ा करण जी ॻाल्हि करे पियो ऐं हुकूमत ख़ामोश आहे, हुकूमत में शामिल पार्टियूं ख़ामोश आहिनि। हिकु फर्द ॻाल्हाए पियो, उहो थींदो केरु आहे, मुल्क अंदर उन जी हैसियत कहिड़ी आहे, उन जी सुञाणप छा आहे, हू जंहिं घर जो नौकर आहे उन घर जी नौकरी करे। जेवर सरबराह मौलाना फज़ल रहमान मोहसिन नकवीअ खे 7 सुरियूं ॿुधाए छॾियूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मौलाना फज़ल रहमान जो चवण हो त जेको शख़्स

0: जी गाल करे पियो उन जो मुल्क जे मसलन सां को बि वास्तो न आहे। एतिरा बेवस असां बि न आहियूं जो तव्हां मुल्क सां खेॾंदा रहो ऐं असां ख़ामोश रहूं। मुल्क नवनि मसलनि जी सट सही नथो सघे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।